0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: तेरा मेरा रिश्ता क्या, तूने अब तक सोचा क्या, हम तुम चांद नदी कश्ती, सच होता हर सपना क्या, वाकिफ हूँ मैं सीरत से, अब सूरत पे पर्दा क्या।

फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ सरगम आप सुन रहे थे सीमा तिवारी के साथ। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बजने वाले हैं। ये वक्त है अब तक के मुख्य समाचार का, सुनेंगे अब से थोड़ी ही देर में।

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय झारखंड के एक दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के क्रम में वे कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। श्री राय ने राजधानी के निकट उरमांझ स्थित एक विश्वविद्यालय में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में झारखंड समेत देश भर में अभूतपूर्व काम हुए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने आज बोकारो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। श्री मुंडा ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में किसानों, गरीबों और साधन विहीन लोगों के उत्थान के लिए लगातार काम हो रहे हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने स्पष्ट किया है कि मतदाताओं की मैपिंग एवं इन्यूमरेशन फेज के दौरान मतदाताओं से कोई दस्तावेज एकत्र नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2003 के मतदाता सूची से जिन्होंने मैपिंग करा लिया है लेकिन उसमें कुछ त्रुटि है तो उन्हें इन्यूमरेशन के दौरान कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। श्री कुमार ने बताया है कि 2026 की मतदाता सूची में शामिल चिन्हित उन्हीं मतदाताओं से दस्तावेज एकत्र किए जाएंगे जिन्हें सत्यापन अवधि के दौरान नोटिस मिलेगा। विश्व रक्तदाता दिवस पर आज राजधानी रांची समेत राज्य भर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जामताड़ा जिले में भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। मौके पर 8 जून को आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदान करने की प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।

उन्होंने लोगों से रक्तदान करने की अपील की ताकि विषम परिस्थिति में किसी की जान बचाया जा सके। मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने तात्कालिक पूर्वानुमान में बताया है कि गढ़वा, गुमला, लातेहार, लोहरदगा, पलामू और सिमडेगा जिले के कई इलाकों में अगले कुछ घंटों के दौरान तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान वज्रपात होने की भी आशंका है, जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की खड़ी में 5:02 हो चुके हैं। दोस्तों, ये वक्त है कार्यक्रम युववाणी का। आज इस कार्यक्रम में आपके साथ हैं रिया और अंकिता।

0: हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पॉजिटिविटी से भरे होंगे और अपने मन पसंदीदा कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो आ जाइए अपने रेडियो के करीब, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त अंकिता,
1: और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त रिया।
0: आप सभी को हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार।

0: उसके लिए ट्रे में बढ़िया से एकदम गोबर खाद का जो गोबर जो रहता है महीन वाला, उसको बढ़िया से ट्रे के भीतर डाल के उसमें से
1: एक एक बीज
0: उसमें डाल देते हैं दूरी बाई दूरी के हिसाब से।
1: अच्छा
0: हाँ हाँ, तो इसी सबसे यार बढ़िया छायादार जगह में उसको रख देते हैं ताकि बरसात में खराब ना हो या फिर कुछ इस तरह का।
1: हाँ, ज्यादा बारिश होने से तो फिर वहाँ भी सड़ेगा या फिर ज्यादा धूप होने से भी तुरंत मुरझाएगा नया पौधा। इसीलिए मैंने छायादार जगह में रख के उसको थोड़ा सा बड़ा, कितना साइज होने के बाद फिर उसको फिर खेत में लगाते हैं?
0: लगभग 5 इंच।
1: अच्छा, 4 इंच 5 इंच जो भी लगाने लायक हो जाता है
0: जी।
1: फिर उसको जड़ सहित मैंने उसी में उखाड़ के उधर थोड़ा सा ही मैंने ये रहता है मिट्टी तो या गोबर थोड़ा सा ही रहता है
0: जी।
1: उखाड़ने भी सुविधा होता होगा उसमें, आराम से उखड़ जाता है नहीं?
0: आराम से उखड़ जाता है। उसके बाद जहाँ लगाना है उसको वहाँ पर उसको लगा देते हैं।
1: अच्छा, ऐसे में पौधा भी नहीं मरता है और जल्दी से वहाँ जड़ भी पकड़ लेता है
0: जी। हाँ,
1: अच्छा,
0: मतलब बरसात के सीजन में
1: इस तरह का नर्सरी करने से मैंने ज्यादा नुकसान नहीं होगा और सही तरीके से खेती भी होगा नहीं
0: जी।
1: अच्छा, तो इस तरह का खेती में जैसे आप लोग जैसे पूरा तैयार हो जाता है या फिर फसल निकालना शुरू हो जाता है तो क्या दूसरे व्यापारी के साथ आप लोग संपर्क करते हैं कि बेचने के ना, बेचने का क्या व्यवस्था है ना, अपने आसपास का कोई बाजार में ही बेचते हैं या फिर बड़े व्यापारी के साथ बातचीत करके एक ही साथ पूरा थोक में देते होंगे?
0: जी हाँ, वो थोक है, वो मंडी है, ये सब अच्छा। में दे देते हैं, मतलब उसके लिए जितना भी निकले कोई दिक्कत नहीं उसमें, सब
1: बेचने में सुविधा,
0: बेचने में सब सुविधा हो जाता है,
1: एक ही बार पैसा भी आ जाता है और उतना इंतजार नहीं करना पड़ता,
0: उतना इंतजार करना नहीं पड़ता है
1: और सही रेट में हम अपने बातचीत करके दे देते हैं
0: जी। हाँ,
1: अच्छा,
0: बेचने के लिए कोई दिक्कत नहीं।
1: हाँ, आजकल तो ऐसे काफी सब्जी का ऐसे मांग रहता ही है, लोग खरीदते ही हैं
0: जी। हाँ,
1: और इसके अलावा जो भी जो डेली मार्केट है तो आसपास का बाजार में चाहे चौक चौराहे में भी बेचते होंगे
0: ना? इसके लिए भी बेचते हैं।
1: हाँ, हाँ।
0: जैसे कि हम अभी ले गए हैं थोक में या फिर मार्केट में और घर में सदस्य हैं वो जैसे गांव घर के आसपास में ये सब में बेचते हैं।
1: अच्छा अच्छा
0: जी। हाँ,
1: अच्छा, पहले जमाने में देखा जाता था कि लोग काफी डाली वगैरह सब छोटे छोटे पेड़ पौधे ये सब टहनी वगैरह काटते थे और अपना हर बरसात का शुरुआत में ही इस तरह का मचान देने के लिए प्रयास करते थे, तो अभी वाला पद्धति धीरे धीरे घटते जा रहा है कि अभी भी लोग इस तरह का करते हैं थोड़ा बहुत?
0: जी नहीं, अभी तो इस तरह का नहीं करते हैं।
1: अच्छा,
0: जैसे कि अभी पहले
1: दूसरे का देख के मैंने थोड़ा सा सीख रहे हैं ना?
0: सीख रहे हैं, प्लस पहले जैसे पेड़ पौधे भी तो नहीं रहे।
1: हाँ, सर, थोड़ा सा घटते जा रहा है,
0: घटते जा रहा है और इसको अभी उसी सब को जो है उसको भी काट देंगे और भी घट जाएगा, इसके लिए
1: पर्यावरण भी खराब होते जाएगा।
0: हाँ, इसीलिए वो सिस्टम अभी थोड़ा छोड़ दिए हैं।
1: अच्छा,
0: अभी जो बांस का जो सिस्टम है वही चल रहा है सर।
1: हाँ हाँ
0: जी, मचान जैसा उसके लाइन बाई लाइन उसको मतलब खूंटा जैसा बना करके वही सिस्टम हमको अच्छा लगा।
1: हाँ,
0: वही सिस्टम देखा देखी करके सभी लोग कर रहे हैं।
1: अच्छा, धीरे धीरे जैसे कि झाड़ी भी खत्म हो रहा है, लोग पहले तो झाड़ी से अपना आसपास का घेरान करते थे तो झाड़ी के जगह में आजकल भी तो नेट या तार जाली ये सब भी तो कर रहे हैं आजकल घेरान के लिए नहीं?
0: हाँ, ये सब भी कर रहे हैं,
1: सुविधा भी हो रहा है,
0: सुविधा भी हो रहा है लगाने में।
1: हाँ, साफ सुथरा भी लगता है
0: जी। हाँ,
1: तो ये सब मैंने थोड़ा आसपास में सब चीज मिल भी रहा है आजकल ना
0: जी।
1: अच्छा, तो बीज वगैरह सब कहाँ कहाँ से लेना चाहिए ताकि लोगों को धोखा ना हो और मैंने सही दाम और सही बीज मिले?
0: तो इसके लिए तो हम लोग का एक नामचीन जगह है, हम लोग वहीं से लाते हैं, जैसे कि एक नाम है
1: विश्वसनीय है,
0: विश्वसनीय है, वहाँ एक मतलब जगह का नाम है बुंडू, वहाँ से हम लोग लेके आते हैं हाइब्रिड बीज।
1: अच्छा,
0: सब
1: अच्छा
0: जी। हाँ,
1: मैंने धोखा भी नहीं होता है और सही बीज मिलता है
0: जी।
1: अच्छा, मैंने जिस तरह का काफी महंगे में आप लोग लेते होंगे तो धोखा तो नहीं होना चाहिए ताकि एक बार लगाने के बाद सारा मेहनत खर्च नहीं तो बेकार हो जाएगा नहीं?
0: जी, उसके लिए कोई धोखा नहीं है सर, वो तो अच्छा। खुद बोल देते हैं कि आप बीज ले जाओ, इसके लिए हम गारंटी हम देते हैं, इस टाइप से वो बोल के दे देता है।
1: अच्छा,
0: उसमें कोई धोखेबाजी नहीं, सिस्टम नहीं है। बढ़िया उसका जो पौधा निकलेगा वो भी बढ़िया निकलेगा,
1: निश्चित रहता है। मैंने ये उपचारित वाला बीज है इसलिए इसमें धोखा नहीं होता है
0: जी। जी,
1: अच्छा, तो अंततः हमारे किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे, आधुनिक खेती करने के लिए लोगों को यही नया पद्धति ही अपनाना चाहिए ना?
0: जी, हम तो वही सलाह देंगे और भी जितना भी किसान भाई बहनों हैं, इन सब से मेरा वही एक निवेदन है कि हम वही लाइन सिस्टम वही सबसे हमको अच्छा लगा
1: और अच्छा बीज खरीद के लगाएं
0: बस यही
1: ना हो।
0: बस यही निवेदन है और भी किसान।

0: जी सर।
1: तो आपने हमारे किसान भाई को बहुत अच्छी जानकारी दी और नए पद्धति से लत्तर वाली सब्जियों की खेती के लिए जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार
0: जोहार।
2: तो किसान भाई बहनों, अभी हम मिल रहे थे एक सफल कृषक गुरुचरण मछुआ जी के साथ, जो लत्तर वाले सब्जियों की खेती सालों भर करते रहते हैं और इनके करने के अलग अलग तरीके होते हैं। आधुनिक पद्धति से हम लत्तरदार सब्जियों की खेती कैसे करें, इस पर विस्तार रूप से जानकारी दे रहे थे। हाँ किसान भाई बहनों, पहले ज़माने में लोग पेड़ के टहनियों को काटते थे और अपने लत्तरदार जो भी सब्जियां हैं उनको मचान के लिए या फिर सहारे के लिए उसके सामने गाड़ करके फैलाते थे, लेकिन धीरे धीरे पर्यावरण समाप्त होते जा रहा है और ये विधि भी हम नए तरीके से अपना रहे हैं और अब वर्तमान में ऐसे तरीके अपनाते हैं जिसमें हमके तोड़ाई के लिए या फिर छिड़काव के लिए हर तरीके से हमें सुविधा भी होती है। तो मचान विधि आज के लिए विशेष करके बेल वाली यानी कि लत्तरदार सब्जियों के लिए बहुत ही अच्छा है और ऐसे तरीका अपनाना भी चाहिए हमारे किसान भाइयों को। तो किसान भाई बहनों, इस जानकारी से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी और उम्मीद है आप सब इसे अपनाएंगे। और आगे हम कार्यक्रम में मनोरंजन करते हैं और सुनते हैं पंच परगण्या लोकगीत। कलाकार हैं सुभाष कोयरी एवं साथीगण।

सुभाष कोयरी एवं साथियों के स्वर में अभी हम सुन रहे थे पंच प्रगणा लोकगीत। किसान भाई बहनों, खेती गृहस्थी कार्यक्रम में हम हमेशा नई नई जानकारियां देते रहते हैं और आप भी इच्छुक रहते हैं कि कुछ नई पद्धति से खेती करने के तरीके बताए जाएं। तो समय समय पर हम विशेषज्ञों से भी मिलाते हैं और जो सफल कृषक होते हैं वो भी अपना अनुभव बताते हैं। तो आप भी अपने प्रतिक्रिया जरूर हम

ಮಾಡಿ ಜನರೇ ರಾಮಯಾನೆ ಕಾತಾ.

0: मंत्री रितेगुनाय पीढ़ी दिए सुनास गटकरोतना निमिन बुगिन वड़चन को बकड़तना हो कपंद पै को पैटतना हलो परसिकतन
1: सारिगे राजा ईसु रास गटकरोतना नेन पीढ़ी रे टाइट कुपेन के सलंगा
0: मंत्री रितेगुनाय वादलम तिबाते तेदो दुख आराम बाकेन ते ताकुरियोला नुबाकिया
1: बुगिन वार राजा

0: चोट क्यों नहीं आई है?
1: पिया राजा इनका नो गे मिला ये
2: इला राजा दादा अबुन बा लेना उबेन
0: पिया अबुन रिया बा लेनो इनम चिबुगी डाट करो
1: मंत्री राजा तुरंग दो जो को मनंगे जोम सनंग वा गोड नगुई बेन
3: अच्छा गोम के गोड नगुई तना
0: रेपोई कुंडाई ये सुजने तो मियनो इन जगर अभी नहीं मिलते कन जगर दही बेन तना
1: ये सुगुगे ते मिन जगर दही ने राजा
0: रेपोई कुंडाई आ नामा मिसिंग कुइलो आन दिन चैन चनंग तना
1: आतिया राजा चीली के ते मिसिंग कुइलो तुम आन दिने अमो सिंह राजा अन्यो सिंह सिंह को हागा हागा तो चिली के लंग बपला
0: चिली के तलंग हागा वा आइन तो निमिन मरंग राजा आम लेकान पोर्जा पुचो चचा कर लो हागा वा आम लेकान को तो आइन कहीं लेकर ते कुआ
1: राजा आम ची पोर्जा आइन उरी मेरोम बाबा भी थी कुलंग नेल कुआ उकुए तारे पुरे मिना कुआ आइन आना उरी करा मेरोम मिलिको किता हतु इते मटाया जोंग इन बतर कुआ अमो अमा उरी किरा मेरो मिलिको किता हतु इते मटाया जोंग बतर को में
4: ठीक ही हुआ गप्पा किला नेल कुआ उपाय तारे पूरा मिना कुआ

ಬರೋದು.

0: लोक एकदम राजा अरे और इकड़ा मेरो मिडिको किता हतु इते पठान जा जोंगन बतोर के प्रयोग को सरियाना आमा और इकड़ा मेरो मिडिको दो किता हतु चिना मोगरे के कको बेटा किडा हा हा हा हा हा सुकुला एबिलयाना दुडुबिन लागु येना
1: राजा तीसिंग दो ऐसे होगा सुमरों के बिन ले लो तो चिना को बिन उड़ू उतना ओ मंत्री
2: कहीं बार सही लिखा है तो मैं भी कहीं दो मौत है उड़ू ते बुद्धिंग दंडा आकने रितो गुनाई मिस्ते कोई लो आंधी के अंते रितो गुनाई पिड़ी तन्या में तन उड़ो कर रहे तो रितो गुनाई मितन्या हादा कना लगे हैं मितन्या उरी किड़ा मेरो मिंडी बाबा बीच तियो हराव किड़ी नेते जीव चिकड़ी ने नेंद्रिया बोतला इडल किड़ी उड़ो
1: ओ राजा नेन लगे बन कुरुम कुंते ने निन्ना लगे दो मानी जंकन अलबे नुडू ने बोतला इडी क्या बुद्धि दो अलंकार मीना
2: इलेकन बुद्धि को मीना मंत्री जगर बन
1: राजा अबेन अदान गया बेन रितो गुंडाई ऐसो एमो गुंडाई तना आया एरा इनकान एमो एरातान गया है इना में ते राजा अलंकार मीना दमार कम बुद्धि कहाँ सिलां अकरें ची है उन्हों उपन सुमाए रितो गुंडाई वार रे काय टाई ने एन चना ब्लांग दकरे ची है राजा दमार कम कुंभुजेना में ते एन चना पुती कहाँ सिलां नाम ची है उन्हों रितो गुंडाई तार लां नाम कह रहे तो कुंभु में ते रितो गुंडाई मैं रिया डिंकी सिलां तब नहीं है रितो गुंडाई जो दी निकट सिलां गोई रहे तो जोगना गुंडाई गुलाई गुंडाई चंदन गुंडाई उन्हों मान बीर मानो सोधार लिकान हो दिसुन रहन बीर को बोरो या उन्हों अलां लो काको मामरा वा
2: ओह मंत्री अभिना लिकान उरो कुदो मुर्दों के समणम को आता है त्रियो आना मुआ
3: मार गम के राती सिंदो को एको लिंग अती बाजम तन
4: ओह इनामे तर बुटा सिंदो को एकान को सुनुदे जाना आओ कपपाई तीसी है
3: तीसी गली नो जोते ने जाओगे तो बनाओगे
4: ने कोई दो जिमाम तना
3: कोई दो बेनी मारी और ऐसे मुसीनी है तमार को मैं नालांग नहीं था आए लेंगे उन चीनान की क्या या बेंद्री क्या उड़े बेंद्री
4: इधु अपने गांव से को दे ऐसे पे चकड़ा राजा को आधमार को मुको को सुनने में कहते अपन ता कोरे प्यासरी नहीं है चाना कोरे राजा को अपन ईमान कुंभु में ते को सासा बा
3: राजा ओलिंग को ली की है काय रिक्या उड़े किधर
4: इधु अपने गांव से को तो सारुसा काम रहता अंदर लिखा पे कजी है और हाड़ा उन जिके हों लिखा पे कजी है इनांगे तने का ये दे रहे हैं ने नियता चावलें इमाम तना देना हमें
3: अच्छा गम के राय मारी है बेन नियता चावली वो गीते तमार कमरी

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हो अखड़ा, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। और अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे आईसीसी वुमेन्स

टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 भारत बनाम पाकिस्तान का आंखों देखा हाल। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: Bowling as well, so we know we have a good bowling unit, and so we just need to improve in the batting side, so we are good to now.
1: Okay, let's talk about the bowling as well. How's the knee to start with?
0: Yeah, good.
1: Okay, how do you bowl on a wicket like this that's offering some runs?
0: Yeah, obviously it looks like a batting track, so but still we have a good bowling unit, we have a good spin bowling attack, so I think it will be a good contact.
1: Okay, any key in or outs for you for the team?
0: Yeah, we are going with Saira. She will be playing first time in the World Cup, so that will be
1: our. Oh, the Kalesha Valley will be happy with that. All the best today.
0: Thank you.
1: India have won the toss today and they're going to have a bat first.
2: So a very happy Indian captain over there, Smriti, all smiles, telling us that we have won the toss and India has chosen to bat first. A good toss to win today, Obi Vaishali.
3: मुझे ये लगता है कि टॉस जीत के हमने बैटिंग का सही फैसला लिया है, क्योंकि इस पिच पे एक तो बैटिंग पिच है जो कि हमारी फातिमा पाकिस्तान की कैप्टन ने बोला है, लेकिन इसमें एक खासियत और है. जैसे जैसे यहाँ पे टाइम ढलता जाएगा वैसे वैसे स्विंग और स्पिनर्स पे काफी बेनिफिट भी मिलता जाएगा. सो ये एक बैटिंग जो हमारी कैप्टन ने ली है ये एक बहुत सोची समझी चाल है और बहुत ही अच्छा डिसीजन भी लिया है इन्होंने.
2: Also a slip of tongue over there by me over there, not Smriti Mandhana but of course Harmanpreet Kaur. But just to carry that conversation forward very quickly, jo aapne yahan baat rakhi abhi Vaishali ki jaise jaise ye wicket aur purana ho gaya pitch hogi, so it's a good wicket abhi bat karne ke liye, lekin baad mein bowler friendly ho jayega. I'll come to you Mona on that. We saw both the captains jumping over there at the choice of having chosen to bat first today, and given the fact that also we have Bharti coming back into the playing 11 for us today, do you think that's an added advantage in terms of batting for India?
4: Definitely yes, क्योंकि आप देखिए कि वर्ल्ड कप की भी हम बात करें, अगर 50 ओवर्स का जो वर्ल्ड कप था, बैटर्स का बहुत बड़ा उसमें योगदान रहा है, और यहाँ पर सबको उम्मीदें होंगी कि स्मृति मांधना हो या शेफाली हो, अच्छी स्टार्ट अगर भारत को यहाँ से मिलती है और मिडिल ऑर्डर को स्ट्रांग करने के लिए भारती फुलमाली को आज रखा गया है टीम में. हरमनप्रीत कौर ने अच्छे दो हाफ सेंचुरीज लगाए हैं जो प्रैक्टिस मैचेस हुए थे उसमें, उनका फॉर्म बहुत क्रूशियल है भारत के लिए, और ऋचा घोष हैं. तो हम कुल मिलाकर ये जो आइडिया होगा कि एक बड़ा स्कोर यहाँ पर खड़ा किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो पूरी तरह से नहीं तो 80% फातिमा सना पर निर्भर करती है. फातिमा का विकेट अगर जल्दी निकल गया तो वो क्रम्बल कैसे करते हैं वो हमने देखा है. तो यहाँ बहुत ही सही डिसीजन है, जैसे वैशाली जी ने कहा कि पहले बल्लेबाजी की भारती को टीम में रखा, बैटिंग ऑलरेडी स्ट्रांग है इंडिया की, एक बड़ा स्कोर अगर यहाँ खड़ा करती है टीम, टोन सेट करने वाला मैच कहते हैं. और कागजों पर भी भारत का पलड़ा बहुत भारी है, और ये ग्रुप हमने देखा है कि कितना कठिन है, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, इसमें साउथ अफ्रीका भी है, तो किसी भी कोताही की यहाँ गुंजाइश नहीं है. तो यहाँ आइडिया यही होगा कि एक बड़ा स्कोर खड़ा किया जाए.
5: जी हाँ, बिल्कुल. भारत और पाकिस्तान के बीच 16 T20 मुकाबले हुए हैं, इनमें भारत ने 13 और पाकिस्तान ने 3 मैच जीते हैं. T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो दोनों टीमें 8 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें भारत ने 6 बार और पाकिस्तान ने 2 बार मातजीब मारी है. कर्नल, आपसे ये समझना चाहेंगे, जब से वहाब रियाज ने कमान संभाली है पाकिस्तान टीम की, एक अटैकिंग इंटेंट नजर आया. जो जिम्बाब्वे के साथ उनकी बाइलैटरल सीरीज हुई थी वहां हमने देखा कि 200 से ज्यादा स्कोर बने, लेकिन प्रैक्टिस जो मैचेस थे वर्ल्ड कप के वहां वो टीम स्ट्रगल करती नजर आई. क्या उस माइंडसेट से भारत किस तरह के टोटल के आसपास आज देखेगा पहले बल्लेबाजी करते हुए?
6: देखिए, अगर आप पाकिस्तान का परफॉर्मेंस देखेंगे लास्ट 4 मंथ्स में, दैट इज दिस ईयर, तो एक्सेप्ट फॉर द सीरीज अगेंस्ट स्कोर्ड वेल इन रेस्ट ऑफ द मैचेस, दैट इज इन साउथ अफ्रीका एंड ऑल्सो इन इंग्लैंड एंड आयरलैंड, दे हैव लॉस्ट ऑल मैचेस एक्सेप्ट वन विच दे वन. सो जनरली इफ यू सी देयर बैटिंग रिवॉल्व अराउंड फातिमा सना. इफ शी गेट्स आउट अर्ली then they are scoring in the range of 120 to 130 runs. So in wickets ke upar mere khayal se hum agar batting first abhi hum kar rahe hain, batting hamari strong hai, to agar hum score 170 se upar kar dete hain to it will be a very challenging total for Pakistan and we should be able to beat them.
5: जी हाँ बिल्कुल, 2025 के बाद से फातिमा सना ने 12 मुकाबलों में 335 रन बनाए हैं, 13 विकेट भी लिए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 183.06 का है।
2: जी एंड आनंद, दिस इज ऑल्सो फॉर ऑल आर लिसनर्स हु आर जॉइनिंग अस टुडे ओवर हियर, आवर कॉलिंग लाइंस आर ओपन। जी हाँ, हमारी कॉलिंग

0: लाइंस खुल चुकी हैं 011-2342-1084, 011-2342-1085। आप हमें कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ कर्नल भूपराज सिंह, वैशाली माथुर और मोना पार्थ सारथी आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस एंड नाउ टू टेक दिस कॉन्वर्सेशन फॉरवर्ड। वैशाली, आई कम टू यू। बर्मिंघम की जो पिच कही जाती है, इट्स ऑलवेज बीन अ स्लो पिच, 6.77 का यहाँ पर हमने देखा है एवरेज नेट रन रेट पर ओवर चलता है जो हम बात करते हैं। उस एंगल से हमने आज भी देखा कि व्हेन वी फर्स्ट वन द टॉस, हरमनप्रीत सेड दैट वी बोलिंग पर्सपेक्टिव फॉर द इंडियन साइड, आप किस तरह से देख रहे हैं आज भारत अपनी स्ट्रैटेजी लेके उतर रहा है?
1: वैशाली मैम, इससे पहले कि आप इस सवाल का जवाब दें, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार, बताएं क्या जानना चाहते हैं आप? ढाई सौ की उम्मीद लगा रहे हैं जी वैशाली।
2: जैसे जी बिल्कुल, तो का टारगेट जरूर होगा भारतीय टीम का, लेकिन इसके साथ मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के स्पिनर्स भी कोई कम नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि स्मृति मंदना जब उनके सामने नासरा संधु और सादिदा आती है ना, तो उन्होंने तीन मैचेस में दो बार उनको आउट किया है। लेकिन आज हमारी स्मृति मंदना को इनसे बचना होगा, इन खुल के खेलना होगा, क्योंकि हमारे जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, बात करें हम स्मृति मंदना, हरमनप्रीत है, कहां उनको लैक करके उसको इंप्रूव करना है ड्यूरिंग द मैच, लेकिन जो हमारे यंगस्टर्स, जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, उनको भी कैसे लेके साथ चलना है। और उसके बाद मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि जो फातिमा है पाकिस्तान टीम की कैप्टन, वो उनको नी इंजरी है। सो हमारी टीम को ये पता है कि उनको नी इंजरी है, तो ये एक बेनिफिट भी हमारी टीम के लिए है।
1: जी हाँ बिल्कुल, इस मैच से पहले ऐसा लग रहा था कि शायद वो नहीं खेलेंगी। आपने पाकिस्तान के कुछ स्पिनर्स की चर्चा की। 2025 के बाद से सादिया इकबाल ने 12 मुकाबलों में 14 विकेट लिए हैं, फातिमा सना के नाम 13 विकेट हैं, जबकि नासरा संधू जिनका आप जिक्र कर रही थी उनके नाम में अच्छी गेंदबाजी करती हैं। मुना, अगर भारतीय बल्लेबाजी की थोड़ी चर्चा करें, जिस तरीके से शेफाली फॉर्म में हैं, जनवरी 2025 के बाद 21 मुकाबलों में 677 रन उनके नाम हैं और वनडे वर्ल्ड कप में एंट्री के बाद से लाजवाब फॉर्म कैरी कर रहे हैं। स्मृति, हम सब जानते हैं कि बड़े टूर्नामेंट्स की बड़ी प्लेयर हैं, यहां किस तरह का स्टार्ट देख रही होंगी? चूंकि पिच पर काफी चर्चा हो रही है, बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक है, आते ही स्टार्ट करेंगी या कुछ ओवर देखेंगी?
3: देखिए, फरवरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 84 रन बनाने के बाद स्मृति एक भी अर्धशतक नहीं बना पाई है लास्ट 6 पारियों में। इसके अलावा शेफाली की भी बात करें, जोहानिसबर्ग में जो 64 रन बनाए थे उसके बाद से की जाती है। तो यहां पर क्योंकि ये विश्व कप है, जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूं, एक भी मैच में आप कोताही नहीं बरत सकते, तो राइट फ्रॉम द वर्ड गो शुरू से पहली गेंद से ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी होगी। ये T20 क्रिकेट है, वनडे विश्व कप हमने जीता वो अतीत की बात हो गई है। ऑलमोस्ट जो फलक्रम है टीम का वो वही है, टीम वही है ऑलमोस्ट, तो इन्हें पता है, जिसको कहते हैं ना बीन देयर डन दैट, एक खिताब हम जीत चुके हैं, हमें पता है खिताब कैसे जीते जाते हैं। तो वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो स्ट्रेटजी है, जो कागजों पर बनती है, उसको मैदान पर रणनीति पर अमल करना जरूरी होगा। और यहां पर चूंकि आपने बल्लेबाजी चुनी है, तो आपको शुरू से ही आक्रामक खेल दिखाना होगा, और ये पाकिस्तान के खिलाफ मैच है, तो थोड़ा कैरिड अवे होने से भी यहां बचना बहुत जरूरी होगा।
0: राइट, नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। अविनाश जी, बताएं क्या पूछना चाहते हैं आप?

0: Right, I'll take that question straight to our expert, Colonel Gupraj. Would you want to address that? Richa Ghosh coming in at number three is his ask or suggestion. How good or
1: And Richa Ghosh may not be a good option to set at number 3. Let her play at number 6 or 7 in the later part of the innings. And Harmanpreet, Shefali Verma and Mandana, they are good players. They will, you know, manage on top along with Jemima Rodriguez.
0: Right. I'll just take a question. अच्छी बात रखी थी कि 13-3 का आंकड़ा है 13-3 का आंकड़ा भारत के पक्ष में अगेंस्ट पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान इज ऑलवेज अ वेरी बिग थिंग बिकॉज इट्स इंडिया पाकिस्तान बट इन टर्म्स ऑफ द क्रिकेट एंड हाउ द क्रिकेट ऑफ दीज टू नेशंस हैज इफ वी टॉक स्ट्रिक्टली इन टर्म्स ऑफ हाउ द टू नेशंस टुडे स्टैंड इन टर्म्स ऑफ
2: इट्स अ माइंडसेट क्योंकि अगर एक प्लेयर अगर खेल रहा है तो उसके साथ साथ हमें ना सिर्फ ये देखना चाहिए कि उसका किस तरीके की से प्ले करता है रेदर देन हम अपनी पॉलिटिक्स साइड में रख के देखें तो एंड उसके साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि वो किस तरह का फील्डर है कितना अच्छी बैटिंग करता है और वो कितना इन्वॉल्व है टीम के साथ और वो सब फैक्टर्स भी देखे जाते हैं और अभी मैं एक और चीज ज्वाइन करना चाहती हूँ इसमें कि ऋचा घोष के बारे में अभी हम बात भी कर रहे थे तो ऋचा घोष हमारी इंडियन टीम के लिए एक्स फैक्टर है क्योंकि वो उस जगह पे खड़ी है जो जहां पे उनको कहीं भी भेजेंगे किसी भी डाउन पे भेजेंगे वो वहां जाके अपने आप को शो करती है हमेशा हमने देखा होगा कि ऊपर का बैटिंग लाइनअप खराब हो जाता है हमारा कभी कभी हर दिन एक जैसा नहीं होता है लेकिन एक ऋचा घोष ऐसी है एंड वो बैटिंग करके दिखाती हैं और उसके साथ जेमिमा रोजर्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें उनको पाकिस्तान के साथ बैटिंग करना बहुत ही मजेदार लगता है और उनने जो एशिया कप में 2022 में जो खेला था उन्होंने मुझे लगता है कि वो आज उतने ही जोश में भी होंगी
3: जी बिल्कुल अगर हम अपने श्रोताओं के लिए भारत की प्लेइंग 11 की बात करें तो स्मृति मानधन की कप्तान भारती फुलमाली की जाए हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम की कप्तान इनकी कप्तानी में भारत ने T20 वर्ल्ड कप में 19 में से 13 मैच जीते हैं 6 हारे हैं और 2025 के बाद से 19 मुकाबलों में 486 रन बनाए हैं मोना एक ऐसी खिलाड़ी जो काफी समय से स्ट्रगल कर रही हैं बीच में कुछ एक मैचेस में अच्छी पारियां खेलती हैं लेकिन टीम की सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं क्या लगता है इस बड़े मंच
4: नहीं होगा और खासकर अब ज्यादा दबाव होगा क्योंकि हम वनडे में विश्व चैंपियन हैं और उस लय को बरकरार रखने का दबाव जो होता है भारतीय क्रिकेट में हर कोई जानता है किस तरीके से कैसे होता है आती है जब अकेले दम पर उन्होंने पहले दो हाफ सेंचुरी लगाई है उन्होंने अनुभव है रवानगी से पहले एक प्रेस इवेंट में उनसे पूछा कॉन्फिडेंस लेवल देखिए यू वॉन्ट मी टू रिटायर वाई बॉडी लैंग्वेज वहां वो आक्रामक रहती है और मुझे लगता है हरमन वो एक धुरी है जो इस पूरी टीम को जोड़ के रखती है और एक कप्तान के तौर पर उनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा है भारतीय महिला क्रिकेट में तो मुझे लगता है कि वो दबाव जरूर कि वो अब माहिर हो चुकी है
0: राइट एंड आई विल कम रहते अबाउट हाउ द क्रिकेट ऑफ बोथ द कंट्रीज हैज इवॉल्व्ड एंड वेदर पॉसिबली इंडिया का क्रिकेट शायद ज्यादा उच्च हो गया है कंपेयर टू पाकिस्तान का क्रिकेट
4: साक्षी आपने जो सवाल पूछा था कि दोनों देश कहां ठहरते हैं महिला क्रिकेट में ये आपका क्वेश्चन था तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि भारत एक्सपोजर की हम बात करें तो लगातार खेलती आ रही है और पाकिस्तान दो साल में एक या दो श्रृंखलाएं खेला है जिम्बाब्वे के खिलाफ जो है उसको तो मैं कहूंगी बेमेल ही श्रृंखला है, उसमें शायद सबसे फास्ट हाफ सेंचुरी बनाई फातिमा सना ने, लेकिन पहले उनसे होकर पाकिस्तानी टीम नहीं गुजरी है। और भारतीय खिलाड़ी न सिर्फ WPL, आप हंड्रेड्स में देख लीजिए, आप बिग बैश में देख लीजिए, भारतीय खिलाड़ी खेलते हैं तो काफी अनुभव हो गया है बड़े मुकाबले खेलने का, और वर्ल्ड कप फाइनल तक खेल चुके हैं तो बहुत ही फर्क है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी हम देखें या प्लानिंग वाइज भी हम देखें या कहां पर दोनों टीमें खड़ी हैं और बोर्ड का कितना सपोर्ट है पाकिस्तान में।

0: महिला क्रिकेट को और भारत में तो काफी फर्क पड़ता है, आप कितने साउंड होकर उतर रहे हैं मैदान पे वो काफी मायने रखता है, तो मुझे लगता है यहाँ पर निश्चित तौर पर भारत का पलड़ा काफी भारी है।
1: राइट,
2: गेंदबाजी की बात करें तो श्री चरणी पर सबकी नजरें होंगी, 2025 के बाद से 20 मुकाबलों में 28 विकेट और दीप्ति शर्मा एवरग्रीन 20 खिलाड़ियों को आउट किया है। श्री चरणी की थोड़ी बात करते हैं कर्नल, वर्ल्ड कप में
3: देखिए श्री चरणी इज अ वेरी गुड बॉलर, कंट्रोल से बॉल करती है, फ्लाइट करती है, एंड आपने WPL में भी अगर इनका परफॉर्मेंस देखा था तो उन्होंने ऑलमोस्ट हाईएस्ट विकेट टेकर थी, तो शी इज वेरी गुड। एंड ऑल्सो इन दीज लास्ट फोर मंथ्स दैट वी बीन टूरिंग साउथ अफ्रीका टेकन, सो शी इज वेरी गुड, बट वॉट इज मैटर ऑफ कंसर्न इज द फॉर्म ऑफ दीप्ति शर्मा।
2: बिल्कुल सही, मैं इसी सवाल पर आ रहा था, शी स्ट्रगल कर रही है।
3: या शी हैज जस्ट टेकन इन वन मैच 5 विकेट्स, इन रेस्ट ऑफ द मैचेस शी इज नॉट दैट ओल्ड दीप्ति शर्मा दैट वी नो हर टू बी, पर आज उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी। श्रियंका पाटिल ऑल्सो शी इज बोल्ड वेरी वेल इन WPL एंड ऑल्सो इन द प्रैक्टिस मैचेस दैट वी हैड, स्पिनर्स वी आर लुकिंग एट, एंड अरुंधति द फास्ट बॉलर ऑल्सो शी इज डन वेल, तो
1: पुता वांग ऑफ थाईलैंड टू बिकम द लीड टुडे स्टैंड्स एट अकम्प्लिशिंग अ फीट वेर

0: सभी मैचों का प्रसारण हम आपके लिए लेकर आएंगे। आप इस मैच से जुड़ा क्या बताना चाहते हैं? जी हाँ, करोड़ों भारतीय प्रशंसक टीम इंडिया को शुभकामना देना चाहते हैं। जी मोना, दीप्ति शर्मा के बारे में आप बता रही थी।
1: जी बिल्कुल, आपने बात की रिकॉर्ड की दहलीज पर खड़ी हैं और पर्सनल माइलस्टोन्स इतना ज्यादा जब आप क्रिकेट खेलते हैं अक्रॉस द फॉर्मेट, और ये T20 में खास तौर पे दीप्ति शर्मा का जो प्रदर्शन रहा है, जैसे अभी सर बोल रहे थे बड़े मैच की खिलाड़ी हैं और बैक ऑफ माइंड नहीं रहता है पर्सनल, ये अभी इतने विकेट बाकी हैं, तो बड़े मैच की खिलाड़ी है, बड़ा टूर्नामेंट है और सही समय पर पीक करना उन्हें आता है। तो उम्मीद हम यही करते हैं कि न सिर्फ वो माइलस्टोन बल्कि इस टूर्नामेंट में भारत को बहुत डीप ले जाने में भी वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
0: वैशाली, आपसे जानना चाहेंगे कि जब भारती फूलमाली की एंट्री होती है प्लेइंग 11 में, क्या हम इस टूर्नामेंट में बैटिंग ऑर्डर में सफल देख सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी प्लेयर है जो किसी भी ऑर्डर पर आकर तेज तर्रार पारी खेल सकती है।
2: अगर मैं भारती की बात करूं तो आज 50 प्लस स्कोर किया था एंड वो कंटिन्यूस करती हुई आ रही हैं, दैट्स व्हाई वो इस टीम के अंदर आज प्लेइंग 11 का हिस्सा है। और उसके उनके अंदर एक खासियत और है कि उनके अंदर पेशेंस भी है। जैसे कि हम देखें, अगर कंपैरिजन करें शेफाली वर्मा और भारती का, तो शेफाली के पास उतना पेशेंस नहीं है जितना कि भारती के पास है। और मान सकते हैं कि पहला मैच खेल रही हैं, लेकिन पहला मैच हो सकता है उनका जिंदगी का मैच हो और वो इसी मैच से आगे भी आए। तो मेरी तो यही उम्मीद है कि वो 50 प्लस स्कोर करे और हो सकता है कि जहां भी वो ओपनिंग या फर्स्ट डाउन आए तो वहां पे अपने आप को प्रूव करे।
3: राइट, आई कम टू यू नाउ कर्नल भूपराज एंड आस्क यू, डज इंडिया गो इन एज हैवी फेवरेट्स इन द गेम टुडे?

0: I'm hoping for a one-sided match.
1: One-sided, wow. Mona ji?
2: Hands down, बिल्कुल इंडिया फेवरेट है और जैसे हम बार बार बात करें कि इस पाकिस्तान के लिए सब कुछ निर्भर करता है उनकी कैप्टन पर, वो आज कैसे खेलती है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि टूर्नामेंट से पहले मैंने एक बार उनका इंटरव्यू किया था और उन्होंने कहा था कि उनके फेवरेट महेंद्र सिंह धोनी हैं। काफ़ी कुछ कूल डिमेनर जो महेंद्र सिंह धोनी का है वो उसी तरह से कप्तानी में विश्वास रखती है। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि सफलता के मामले में धोनी की वो नक्शे कदम पर ना चले। और
3: आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत एस्बेस्टन बर्मिंघम में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मैच का सीधा प्रसारण आप सुन रहे थे हमारे दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। सुनेंगे प्रादेशिक समाचार अब से थोड़ी ही देर में।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: दीदी नौकरी लग गई।
2: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
1: पर दी
2: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
2: अच्छा
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट।

0: बताइए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ। झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
1: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हाँ, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
3: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय रांची में प्रबुद्ध नागरिक संवाद में हुए शामिल। कहा, किसान हुए खुशहाल, गरीब कल्याण को मिला आयाम, देश की सुरक्षा अभेद्य। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने की रामगढ़ खदान हादसे की जांच की मांग। प्रभावित परिवारों से मिलकर हर संभव सहयोग का दिलाया भरोसा। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज। दो सीटों के लिए 3 प्रत्याशियों के बीच रोचक मुकाबला। भाकपा माले इंडी गठबंधन को देगा समर्थन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने किया स्पष्ट, मैपिंग और इन्यूमरेशन के दौरान मतदाताओं से नहीं लिया जाएगा कोई दस्तावेज। सत्यापन अवधि में चिन्हित मतदाताओं पर ही होगा लागू। और धनबाद में अस्मिता साइकिलिंग सिटी लीग का आयोजन, बड़ी संख्या में छात्राओं ने लिया हिस्सा, उत्कृष्ट प्रतिभागियों को किया गया पुरस्कृत। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय झारखंड दौरे के क्रम में रांची में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। श्री राय ने ओरमांझी के कुच्चू में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन प्रबुद्ध नागरिक से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में किसान खुशहाल हुए हैं और गरीब कल्याण को नया आयाम मिला है। श्री राय ने कहा कि देश के सतत विकास को लेकर कई पहल हुए हैं और देश की सुरक्षा अभेद्य है।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 12 वर्षों का कार्यकाल भारत के लिए गौरव का कार्यकाल रहा है। इसमें गरीबों का घर बना, 81 करोड़ परिवार को आज मुफ्त का अनाज मिल रहा है, 5 लाख तक का इलाज प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना से हो रहा है। आज प्रत्येक किसान भाइयों के घर में खुशहाली है किसी न किसी रूप में। आज विकास का दर बढ़ा है और दुनिया में हम 4थी अर्थव्यवस्था है।
5: भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने आज बोकारो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। श्री मुंडा ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में किसानों, गरीबों और साधन विहीन लोगों के उत्थान के लिए लगातार काम हो रहे हैं।
7: अपने देश के 140 करोड़ से अधिक देशवासियों के लिए भविष्य का भारत को बनाने के लिए लंबे कालखंड तक भारत एक सशक्त राष्ट्र बन करके लगातार दुनिया के सामने प्रधानमंत्री जी के अपनी मर्यादा को, अपने सम्मान को बनाए रखे।
5: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल निषिद्ध मादक पदार्थों की रोकथाम को लेकर राज्यव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री सोरेन राजधानी के प्रोजेक्ट भवन स्थित झारखंड मंत्रालय से इस राज्यव्यापी अभियान को लेकर प्रचार वाहनों को रवाना करेंगे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज रामगढ़ जिले के अरगड्डा में अवैध कोयला खदान में मृतक युवकों के परिजनों से मुलाकात की और हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। इस मौके पर श्री मरांडी ने कहा कि बंद पड़ी खदान में एक व्यक्ति के गिरने के बाद उसे बचाने गए 4 लोगों की दम घुटने से मौत सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्ट तंत्र का परिणाम है। श्री मरांडी ने मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच

0: और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। झारखंड से राज्यसभा की दो सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा। झामुमो के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। एनडीए और इनडी दोनों ही गठबंधन अपनी अपनी जीत को लेकर आशान्वित है। इधर राज्य में एक बार फिर राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने आज रांची में प्रेसवार्ता में बताया कि पार्टी के दोनों विधायक इंडी गठबंधन के पक्ष में मतदान करेंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने स्पष्ट किया है कि मैपिंग और इन्यूमरेशन के दौरान मतदाताओं से कोई दस्तावेज नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2003 के मतदाता सूची से जिन्होंने मैपिंग करा लिया है लेकिन उसमें कुछ त्रुटि है तो उन्हें इन्यूमरेशन के दौरान कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। श्री कुमार ने बताया कि 2026 की मतदाता सूची में शामिल चिन्हित उन्हीं मतदाताओं से दस्तावेज एकत्र किए जाएंगे जिन्हें सत्यापन के दौरान नोटिस मिलेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्सेंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि यह उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। श्री जाधव ने बताया कि इस वर्ष योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग है।
1: 21 जून को जो मेन कार्यक्रम होने वाला है वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में कोलकाता शहर में होने जा रहा है। वहाँ पर खुद प्रधानमंत्री भी उसमें सहभागी होंगे और लाखों की तादाद में लोग कोलकाता में आएंगे।
0: ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन की रांची में आज महत्वपूर्ण बैठक हुई। एसोसिएशन के झारखंड इकाई के अध्यक्ष सानंद दास ने बताया कि बैठक में बैंक अधिकारियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई और उन्हें दूर करने पर विचार विमर्श किया गया।
2: एसबीएस बैंकिंग के लिए हम लोग कॉन्स्टेंटली वी आर ट्राइंग एंड वर्किंग एंड फाइटिंग विद द मैनेजमेंट। अभी आज के सिचुएशन ये है कि इवन इन द हॉलीडेज संडे में भी ऑफिसर के काम के लिए उनको बुलाया जाता है। अगर हम ऑर्गेनाइज करके इसी अगेंस्ट में मैनेजमेंट के ऊपर फाइट करें और एक सशक्त प्रतिरोध हम मैनेजमेंट के अगेंस्ट में कर सके ताकि वर्क कल्चर है वो हम सुधार पाए।
0: विश्व रक्तदाता दिवस पर राजधानी रांची समेत राज्य भर में कई स्थानों पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में खास और आम सभी ने रक्तदान कर इस पुनीत कार्य के लिए प्रेरित किया। कोडरमा के रितेश माधव 45 वर्ष की आयु में अब तक 87 बार रक्तदान कर लोगों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। उन्होंने लोगों से स्वेच्छा से रक्तदान कर जरूरतमंदों की मदद करने की अपील की है।
3: अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपके नए ब्लड बनते हैं, वो तेजी से बनता है। शरीर की एक सीमा होती है कि नहीं ब्लड शरीर को चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ब्लड डोनेट नहीं करेंगे, ब्लड दिन पर दिन शरीर में बढ़ता जाएगा, उसकी एक लिमिटेशन होती है।
0: खेल मंत्रालय और अस्मिता खेलो इंडिया की ओर से आज धनबाद में अस्मिता साइकिलिंग सिटी लीग का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में छात्राओं ने हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। विधायक राज सिन्हा ने विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। जिला साइकिलिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भवानी बंगोपाध्याय ने बताया कि बेटियों को खेल के प्रति प्रेरित करने और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के उद्देश्य से इस तरह का आयोजन किया जाना चाहिए।
4: ये पार्टिसिपेंट में जितना प्रतिभागी भाग लेंगे तो उसको उतना ही आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के मंत्रालय का और अस्मिता खेलो इंडिया का जो मुख्य उद्देश्य है उसी उद्देश्य को चरितार्थ करने के लिए ये धनबाद जिला साइकिल एसोसिएशन ने ये कदम उठाए हैं। इसमें अभी करीब 150 से बच्चियां पार्टिसिपेट की है। हम लोग सबको शुभकामना दे

0: हूं।
1: संथाल और कोल्हान प्रमंडल में मॉनसून की दस्तक देने के बाद इसकी रफ्तार में कमी आ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि ये अगले 4 से 5 दिनों के अंदर राज्य के कुछ अन्य जिलों में प्रवेश कर सकता है। इसके लिए अनुकूल परिस्थितियां मौजूद हैं। केंद्र के अनुसार राज्य में 20 जून तक बारिश के आसार हैं। इस दौरान तेज आंधी और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय रांची में प्रबुद्ध नागरिक संवाद में हुए शामिल। कहा, किसान हुए खुशहाल, गरीब कल्याण को मिला आयाम, देश की सुरक्षा अभेद्य। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने की रामगढ़ खदान हादसे की जांच की मांग। प्रभावित परिवारों से मिलकर हर संभव सहयोग का दिलाया भरोसा। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज। 2 सीटों के लिए 3 प्रत्याशियों के बीच रोचक मुकाबला। भाकपा माले इंडी गठबंधन को देगा समर्थन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने किया स्पष्ट, मैपिंग और इन्यूमरेशन के दौरान मतदाताओं से नहीं लिया जाएगा कोई दस्तावेज। सत्यापन अवधि में चिन्हित मतदाताओं पर ही होगा लागू। और धनबाद में अस्मिता साइकिलिंग सिटी लीग का आयोजन, बड़ी संख्या में छात्राओं ने लिया हिस्सा, उत्कृष्ट प्रतिभागियों को किया गया पुरस्कृत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: हो गया इंतजाम।
3: किसका?
2: गुड्डी की फीस का।
3: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए।
4: आरबीआई कहता है,
5: स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब भी बात होती है तो हमने देखा है कि बीते एक दशक में, या यूं कहें कि जब से मोदी सरकार आई है, बीते 12 वर्षों में लगातार इसमें प्रगति देखने को मिल रही है। और ये प्रगति इसलिए भी है क्योंकि लगातार जो अलग अलग तरीके से इसमें इनिशिएटिव्स लिए गए और लगातार जो इस पर फोकस किया गया, उससे आज जो क्रांति आई है वो बदलते दौर की एक नई तस्वीर पेश कर रही है। इन तमाम अहम पहलुओं पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या इसके अलावा स्पेस सेक्टर हो, इसके अलावा अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं या क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये सब कुछ इतना बड़ा हुआ है बीते 12 वर्षों में, अभी हाल में कहां पे है और किस तरह से जो फ्यूचरिस्टिक प्लान है वो क्या कुछ कहता है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। सर, बहुत स्वागत आपका।
6: धन्यवाद।
5: पहला सवाल सर यही है, 12 साल और उसके बाद जो लगातार इनिशिएटिव्स लिए गए, बहुत बड़ी गति मिलती हुई नजर आई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, कैसे इस सफर को देखते हैं और क्या बड़ा होने वाला है जिससे भविष्य और ज्यादा बेहतर भारत का नजर आता है?
6: जैसे कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद, जहां तक विज्ञान को लेकर के अगर हम बात करें या साइंस टेक्नोलॉजी की, तो एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ
5: जी।
6: उसका प्रमुख बिंदु एक तो ये था कि इसको बहुत ज़्यादा प्राथमिकता हासिल हुई। पहले साइंस टेक्नोलॉजी संबंधित विषयों को बहुत ज़्यादा प्राथमिकताएं नहीं मिलती थी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की तरफ से, और प्रधानमंत्री जी स्वयं इसमें रुचि लेने लगे। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया, ये समझते हुए कि अगर आज की दुनिया में हमें इससे आगे बढ़ना है तो हम साइलोज में नहीं चल सकते
5: जी।
6: और तीसरा, विज्ञान में जहाँ ईज ऑफ रिसर्च वो तो लाजिम अनिवार्य है, उसके साथ साथ अंततः उसका लक्ष्य है ease of living for a citizen, तो उसको citizen centric भी बनाया गया
5: जी।
6: हमारे बहुत सारे ऐसे initiative गत 12 वर्षों में ऐसे रहे हैं जिनका सीधा सीधा ताल्लुक नागरिक के साथ है या नागरिक के जीवन के साथ है, और जिसका परिणाम ये हुआ है कि आज मेन स्ट्रीम मीडिया, जो पहले विज्ञान संबंधी समाचारों को या गतिविधियों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता नहीं देता था, उसमें भी जिस तरह से हमारा स्पेस की अचीवमेंट्स हुई, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि स्पेस हैज गिवन अस स्पेस इन मेन स्ट्रीम मीडिया, चंद्रयान के माध्यम से। अरोमा में जब लेवेंडर आया, अभी हाल ही में 3-4 या 2 या 3 दिन का कैंप था मुंबई में
5: जी।
6: तो हमारे युवा लगभग 30-40-50 लाख का लेवेंडर तेल फरोख्त करके आए हैं, तो एक नया एवेन्यू रोजगार का आ गया। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं क्वांटम की, तो मीडिया का भी उससे ताल्लुक है
5: जी,
6: डिफेंस का भी ताल्लुक है, और इसलिए सबको रुचि भी आई। हमने अपने लिए 8 साल का टारगेट रखा था, उसमें से आधा हिस्सा जो हमें 4 साल तक तवक्को थी कि हम पूरा कर लेंगे, वो 3 साल में ही मुकम्मल हो गया। तो अनेकों ऐसे अब स्काई कास्ट जो भी इंस्टॉल किया गया है, जिसके माध्यम से जब कोहरे का मौसम होता है तो बहुत दिक्कत आती है फ्लाइट्स में
5: जी,
6: पायलट को भी दिक्कत आती है, यात्रियों को भी असुविधा होती है, तो उसमें बहुत सारी बेहतरी

0: जो किस प्रकार से फॉग की प्रिडिक्शन और ज्यादा एक्यूरेट प्रिसाइज हो
1: जी
0: टाइमिंग, तो ये चूंकि नागरिकों के साथ संबंधित ये विषय हैं। इसी प्रकार चाहे आप हमारा गवर्नेंस का ले लीजिए, तो हमारा सीपी ग्राम मॉडल है जिसको हमने एआई चैटबॉट के साथ जोड़ दिया, अभी 2 ही दिन पहले की बात है, तो उससे भी आम नागरिक, जहाँ एक जमाने में 2014 से पहले कुल मिला करके हमारे यहाँ सरकार में 2 लाख शिकायतें आती थी पूरे हिंदुस्तान में साल भर में, आज वही संख्या बढ़कर के 25-30 लाख हो गई, क्योंकि लोगों की रुचि बढ़ी, क्योंकि वी वर प्रॉम्प्ट, वी वर रिस्पॉन्सिव, वी आर फॉलोइंग टाइमलाइन। हमारे 95-97% जहाँ पुराने जमाने में 2-2.5 महीने लगते थे अगर जवाब आए, जवाब कई बार आता ही नहीं था, वहाँ हमने ये सुनिश्चित किया कि हर ग्रीवेंस का जवाब भी आएगा, एआई ड्रिवन भी होगा और कोई ह्यूमन बात भी करेगा उससे, और उसकी टाइम लाइन घटा करके 12-13 दिन कर दी गई और बहुत जल्दी 1 हफ्ता हो जाएगी।
1: बिल्कुल सर, इसके अलावा भी हमने देखा है कि जब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जो भी हमें हाल ही में देखा कि बहुत बड़ा कीर्तिमान और उपलब्धि हासिल करते हुए नजर आया, कितना बड़ा चैलेंज था, क्योंकि होमी बाबा ने इसकी नींव बहुत पहले रखी थी कि इसको अलग अलग फेजेस में किया जाएगा, पहला दूसरा फेज और उसके बाद तीसरे की ओर आगे बढ़ना, थोरियम क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा है। ये मात्राएं किस तरह से दिखाती हैं कि भारत का जो बढ़ता हुआ कदम है वो और ज्यादा सशक्त होता हुआ नजर आ रहा है?
0: बहुत अच्छी बात कही, बल्कि मैंने उस दिन जिस दिन हमारा ये टारगेट अचीव हुआ तो मैंने ये कहा था कि होमी बाबा ने जो स्वप्न देखा था उसकी पूर्ति मोदी जी के हाथों से हुई है। द विंडिकेशन ऑफ होमी बाबाज ड्रीम हैज हैपेंड थ्रू प्राइम मिनिस्टर मोदी। और अगर आप जरा गंभीरता से गहराई से सोचे तो समझ में आएगा कि होमी बाबा कितने दूर अंदेश व्यक्ति थे, हिंदुस्तान की परिस्थितियों को समझते हुए,
1: बिल्कुल
0: हमारे साधनों की लिमिटेशंस को समझते हुए उन्होंने हमें एक 3 स्टेज प्रोग्राम दिया। जो 3 स्टेजेस उन्होंने दी थी उसमें धीरे धीरे प्रगति हो, उस तरह से कैसे उन्होंने तय किया कि पहले स्टेज में हम प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का इस्तेमाल करेंगे। हैवी वाटर होता है थोड़ा सा अलग किस्म का, जैसे आम पानी को आप H2O कहते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये होता है D2O, ड्यूट्रोस ऑक्साइड। लेकिन उसमें लाभ ये रहता है कि उसमें आम यूरेनियम इस्तेमाल होता है जो आपको पहाड़ों से या कोस्टल एरिया से मिलता है, उसमें कुछ एनरिचमेंट नहीं करनी ट्रीटमेंट, तो उसको इस्तेमाल से वो यूरेनियम 239 इस तरह से,
1: उसकी मात्रा भी सर कम है,
0: मात्रा भी कम है, और उसका जो स्पेंट फ्यूल निकलता है प्लूटोनियम, तो होमी बाबा का ये तस्वुर था, ये कल्पना थी कि जब हम उसमें थोड़ी सी महारत हासिल कर लेंगे तो उस प्लूटोनियम जो वहां का स्पेंट फ्यूल निकलेगा उसी को हम दूसरी स्टेज में इस्तेमाल करेंगे। कैसे? उसको यूरेनियम 239 के साथ जोड़ के जो थोड़ा सा एनरिच्ड है
1: जी।
0: तो एनरिच्ड यूरेनियम को जब हम प्लूटोनियम के साथ जोड़ेंगे, जिसे विज्ञान की भाषा में मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल भी कहा जाता है
1: जी,
0: तो उससे एक रिएक्टर के लिए एनर्जी भी इजाद होगी और साथ ही साथ उसी रिएक्टर के बैग में हम थोरियम रख देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में जैसे आपने कहा कि सबसे अधिक स्टोर दुनिया का हिंदुस्तान में, ऑलमोस्ट 25% ऑफ द थोरियम इज फाउंड इन इंडिया, और मेनोजाइट हमारा मिनरल उसका एक हिस्सा है। तो उस थोरियम को जब हम बैग में रखेंगे तो जब वो रिएक्टर का दोनों यूरेनियम और प्लूटोनियम अपना काम कर रहे होंगे एज मिक्स फ्यूल, तो प्लूटोनियम से जो उसमें से कुछ एक न्यूट्रॉन्स निकलेंगे पॉजिटिव न्यूट्रॉन, उनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा थोरियम एज ए रिजल्ट ऑफ सम सर्टेन केमिकल सीक्वल ऑफ रिएक्शंस, और इसको एक अलग किस्म के फ्यूल में कन्वर्ट करेगा जो होगा यूरेनियम 233, जो एनरिच्ड नहीं है लेकिन है वो ईंधन ही, फ्यूल ही है। और इस तरह से थोरियम से प्राप्त हुआ, थोरियम से पैदा किया गया यूरेनियम हमें मिलेगा जो हम तीसरी स्टेज में इस्तेमाल करेंगे, और जब हम उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे तो दूसरों पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी, क्योंकि ये थोरियम तो हमारे घर में मौजूद है। तो इस तरह से किया था, और ये जो आपने कहा अप्रैल मास में हम दूसरी स्टेज पर पहुंच गए, यहाँ प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इजाद किया गया और इसकी धूम सारी दुनिया में है। साथ ही साथ चूंकि शांति एक्ट भी आया, वो भी प्रधानमंत्री जी के ही हस्तक्षेप से हुआ, बिकॉज पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के लिए जरूरत बात होती है कि न्यूक्लियर सेक्टर को खोल देना प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, और किसी ने इसकी
1: प्राइवेट सेक्टर के लिए जब खोला गया, न्यूक्लियर का सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए जब मर्ज होता हुआ नजर आ रहा है और खोला गया, ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मानते हैं उन लोगों के लिए जिनके बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं जो इसमें कुछ करना चाहते हैं?
0: बिल्कुल, ये आपने अच्छा किया पूछा। पहली बात तो ये है कि एक बहुत क्रांतिकारी निर्णय था, बहुत कम देश ऐसे हैं दुनिया में जिन्होंने अपने न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर के लिए खोला है
1: जी।
0: तो इसके लिए भी जैसे मैंने कहा, इट रिक्वायर्स पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल करेज, पॉलिटिकल कन्विक्शन, वो मोदी जी के कारण संभव हुआ। अब जब खुल गया तो कई लोग जो शायद सिनिसिज्म की वजह से कहते हैं या आलोचना की दृष्टि से कहते हैं कि साहब अब बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज के लिए खोला गया, ऐसा नहीं है, बल्कि जो हमने शांति एक्ट लाया है उसमें अलग अलग स्लैब्स रखी है। अगर आप 1000 मेगावाट का लगाना चाहे तो आपकी स्लैब कम है, बड़ा लगाना चाहे ज्यादा 100 मेगावाट का लगाएं। अब तो स्मॉल रिएक्टर्स हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स भी हैं, दूसरे स्मॉल रिएक्टर्स हैं जो 200 मेगावाट से भी कम कैपेसिटी के होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बड़ा इकोसिस्टम बनाया गया है पिछले 12 साल में, जिसको आप कंबाइन करके कुछ एक लोग अगर युवा मिल जाए, एक ग्रुप बनाए स्टार्टअप का एंड देन मैच्योर इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, तो जैसे हमारा आरडीआई फंड भी है 50% सरकार की ओर से मिलता है बहुत कम इंटरेस्ट पर, तो आप एक छोटा रिएक्टर भी लगा सकते हैं। यानी दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि शांति एक्ट के आने के बाद और प्राइवेट सेक्टर खोलने के बाद बड़े हाउसेस तो अलग बात है, लेकिन जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं स्टार्टअप्स के एंटरप्रेन्योर्स के, उनके लिए भी लाइवलीहुड रोजगार का एक नया साधन और बड़ा ल्यूक्रेटिव साधन होगा। और आने वाले जमाने में इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये युग है, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का होना लाजिम रहेगा ही रहेगा।
1: बिल्कुल सर, एक सवाल और, एक बड़ी उपलब्धि जो लगातार हम देख रहे हैं कि आपके नेतृत्व में भी आगे बढ़ती हुई नजर आई है, क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर, उसके नेटवर्क को लेकर। कहां तो 8 साल का एक रोड मैप तैयार किया गया था 2000 किलोमीटर का, 1000 किलोमीटर 2 साल के अंदर अंदर पूरा हो गया। क्या चैलेंजेस इसके पीछे और कैसे उपलब्धि इतनी जल्दी हासिल की गई?
0: क्वांटम मिशन हमने लॉन्च किया था सन 2023 में और 8 साल के लिए एक प्लान बनाया था। उस समय भी मैंने ये कहा था कि क्वांटम मिशन की लॉन्चिंग मात्र फिजिकल लॉन्चिंग नहीं है, इसमें एक बड़ा सिंबॉलिक मैसेज भी गया है, वो ये कि हम उन चंद एक 4-5 देशों में हैं जिनका क्वांटम मिशन है। यानी वो जमाना जाता रहा, एक दुनिया भर में ये पैगाम गया कि वो जमाना जाता रहा जब कोई इनिशिएटिव कोई और देश लेता था और फिर 10-15 बरस के बाद हम उसका अनुसरण करते, चाहे वो टेलीविजन था, चाहे वो इंटरनेट था, चाहे वो मोबाइल थे, जो अमरीका में 1950 के दशक में, यहाँ पे 1970 के दशक में पहुंचे, 80 के, अब हम बराबर चल रहे हैं। तो क्वांटम में, और फिर हमने जब 8 साल का टारगेट बनाया, क्योंकि उसके 4 वर्टिकल्स हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, क्वांटम मटेरियल्स, तो उसके लिए 8 साल के अलग अलग टारगेट्स बनाए गए। और जैसे आपने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण रहता है कम्युनिकेशन, क्योंकि एनक्रिप्टेड सिक्योर, हालांकि अभी भी आपके व्हाट्सएप इनक्रिप्टेड, लेकिन वहां ऐसा होगा कि वो संभव ही नहीं होगा उसको अनक्रिप्ट करना। डिफेंस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, मीडिया की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। उसमें हमने टारगेट रखा था कि हम 2000 किलोमीटर तक क्षमता विकसित करेंगे 8 वर्षों में क्वांटम कम्युनिकेशन करने की, लेकिन उसमें से आधी जो 1000 है हमने 2 या 3 सालों में कर ली। यानी हम 8 साल का टारगेट हो सकता है 8 साल से पहले ही कर ले और हम उससे आगे बढ़ जाए।
1: बिल्कुल सर, एक सवाल और आता है कि जैसे हम बायोटेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं, क्योंकि हमने तमाम क्षेत्रों को देखा कि किस तरह से उनमें प्रगति नजर आई, बायोटेक्नोलॉजी में जब हम उम्मीद प्रोग्राम की बात करते हैं, किस तरह से ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा किफायती होगा, उनको सुविधा पहुंचाता हुआ नजर आएगा जो जेनेटिक डिजीजेस से कहीं ना कहीं 2-4 हो रहे हैं और कई बार टेस्ट भी कराते हैं लेकिन पता नहीं चलता, क्या है सर ये उम्मीद प्रोग्राम और कैसे लोगों को फायदा मिलेगा?
0: ये बात करने से पहले मैं ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि ये इसलिए संभव हुआ कि वहां पर भी अभी कोई 2-3 साल पहले हमने बायो E3 पॉलिसी लाई, उसमें भी हमारी पहल है। बहुत चंद एक देशों में जिनकी एक डेडिकेटेड बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी है, बायो E3, अर्थात बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एनवायरमेंट, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एम्प्लॉयमेंट। और वो भी तभी संभव हुआ जब प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री जी के आगे रखी गई, तो उन्होंने अपने बाकी साथियों को भी ये समझाया कि आज शायद इसका महत्व ना समझ आए, लेकिन कल हम किसी देश से पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये भी दुनिया भर में अर्थशास्त्रियों का भी मानना है कि आने वाली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बायोटेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी, जेनेटिक ड्रिवन होगी, रीसाइक्लिंग होगा, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स का होगा, यानी इकोनॉमी का शिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग से हट करके सर्कुलर की तरफ चला जाएगा, जेनेटिक्स की जाएगा। और उसमें भी हमने पहल कर ली है, और हमारा हिंदुस्तान ऐसा है कि यहाँ पर जीन्स को ले तो बड़ी डाइवर्सिटी है
1: जी।
0: हमने उसमें भी सीक्वेंसिंग 10,000 देशवासियों की करने में हम अभी तक सफल हो चुके हैं, हमारा इनिशियल टारगेट है अबाउट 1 मिलियन। इसी प्रकार रेयर डिजीजेस, वो जेनेटिक डिजीजेस जो पैदाइश से होती हैं, कभी कभी उनके सिम्टम्स हो सकता है पैदाइश के समय या जन्म के समय जाहिर ना हो, थोड़ा आगे चल करके हो, क्योंकि इन बीमारियों की संख्या बहुत कम हो रहती है, बहुत कम, चाहे वो सिकल सेल एनीमिया है, चाहे वो नीमन पिग डिजीज है इस तरह के, इसलिए इसको प्राथमिकता भी कम मिलती थी, इसलिए इसके डायग्नोसिस की सुविधाएं भी दुर्लभ थी, इसलिए इसकी दवाई भी बहुत महंगी थी। लेकिन कोई छूट ना जाए, कोई भी नागरिक हमारे शोध से, हमारी सेवाओं से, तो इसलिए उम्मीद का कार्यक्रम शुरू किया, जिसके तहत लगभग अभी भी 3 लाख ऐसे लोग हैं जिनको इसका लाभ पहुंचा है
1: जी।
0: और उसमें हम अलग अलग चरणों में, उसमें जो रेयर जेनेटिक डिजीज है उनमें किस तरह से सहयोग दिया जा सके मरीज को, डायग्नोसिस कैसा हो, अर्ली डिटेक्शन हो, उसके बाद टेस्ट की क्या फैसिलिटी रहे, औषधियों की क्या रहे, उसको लेकर के
1: जी।
0: और इसी तरह से हमने बायोटेक्नोलॉजी का अगर आप देखें तो बायो E3 पॉलिसी के ही तहत हिंदुस्तान का सबसे पहला एंटीबायोटिक भी हमने याद किया है। अभी तक जितने एंटीबायोटिक थे, जब पहला एंटीबायोटिक आया था सन 1948 के लगभग, पेंसिलिन, उस समय पाउडर का था, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में उसका पाउडर थोड़ा इस्तेमाल किया गया था वुंड्स पे, तो वहां से पता चला कि साहब ये इन्फेक्शन के लिए फायदेमंद रहता है। उसके बाद इसकी इंजेक्शन बने, बाद में टेबलेट बनी, तो उसको इस समय क्वीन ऑफ ड्रग्स कहा जाता था। लेकिन तब से लेकर के जितनी भी सक्सेसिव जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स हुई है, चाहे वो पेंसिलिन के बाद क्लोरोफेनिकॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन,

0: सीन, टेट्रासाइक्लिन, जेटा, वो सारी बाहर से सॉल्ट आते हैं। पहली बार हमने यहाँ ट्रायल किया, यहाँ सॉल्ट ट्रायल किया और प्राइवेट पार्टनर के साथ उसकी हम मार्केटिंग कर रहे हैं।
1: सर अब बात करेंगे स्पेस की, क्योंकि स्पेस में बहुत सारा काम हुआ है, गगनयान मिशन पर सबसे ज्यादा नजर है, क्या तैयारियां उसको लेकर, और बीते दिनों में जो हमने देखा चाहे चंद्रयान मिशन हो या इसके अलावा अलग अलग जो मिशन लॉन्च किए जा रहे हैं उसमें कितनी प्रगति मिलती हुई नजर आ रही है जो गगनयान मिशन को बहुत सक्सेसफुल बनाए।
0: मुझे लगता है कि स्पेस सेक्टर में सबसे पहला क्रांतिकारी मोड़, जैसे एटॉमिक को लेकर के आपने शांति की बात की, वो था 5 बरस पहले, जबकि जैसे मीडिया ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज अनलॉक्ड स्पेस सेक्टर, पहली बार स्पेस को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया गया, क्योंकि हमारा ये मानना है कि विज्ञान शोध टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कमर्शियलाइजेशन तभी संभव है कि आप प्राइवेट सेक्टर को पहले दिन से ही साथ लेके चलें।
1: सर ये इससे भी कनेक्टेड है जो प्राइवेट रॉकेट्स भी लोग जो बना रहे हैं अलग-अलग कंपनी।
0: निश्चय, अब देखिए आज से 5 साल पहले हमारा स्पेस इकोनॉमी हिंदुस्तान की कोई बहुत ज्यादा उल्लेखनीय नहीं थी, आज हमारी स्पेस इकोनॉमी लगभग $9 बिलियन और इतनी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है कि आंकलन ये लगाया जाता है, हमारी जो प्रोजेक्शंस इंडिकेट करती हैं कि अगले 8-10 सालों में हम 5-6 गुना बढ़ करके $40-45 बिलियन हो जाएंगे, जिसका अर्थ ये हुआ कि स्पेस इकोनॉमी विल बी एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी एज वी मूव टूवर्ड्स 2047। और हमारा स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप सिंगल डिजिट हुआ करते थे, आज 400 से बढ़ गए, और एक हाल ही में शुरू हुआ स्टार्टअप हमारा यूनिकॉर्न भी हो गया पिछले ही कुछ दिन पहले। अब प्राइवेट सेक्टर में रॉकेट्स भी बनाए जा रहे हैं, लॉन्चिंग्स भी हो रही हैं, और वो इसलिए संभव हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर का सहयोग पब्लिक सेक्टर के द्वारा हो रहा है और दोनों एक समन्वय बना करके कोलैबोरेटेड अप्रोच के साथ चल रहे हैं। और आने वाले समय में हिंदुस्तान की ये भी खासियत है, हमारे रॉकेट्स तो जा ही रहे हैं, रॉकेट से खबर हमारी बड़ी ज्यादा बनती है, जैसे चंद्रयान के लेकर के, इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग साइट, लेकिन हिंदुस्तान की ये विशेषता है कि हमने स्पेस सेक्टर को जितना स्पेस मिशंस के लिए इस्तेमाल किया है उससे अधिक नागरिक जीवन में सुविधा लाने के लिए, ईज ऑफ लिविंग, उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के सुझाव पर गति शक्ति शुरू किया। गति शक्ति इज अ ग्लोबल मॉडल जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में काम आता है, उसकी मॉनिटरिंग में, उसकी टाइमलाइंस को निर्धारित तरीके से संभालने में, उसकी जो बाधाएं हैं, तो ये गति शक्ति इज अ स्टोरी। हमारा लैंड फार्म्स को लेकर के जो कार्यक्रम है, ड्रोन्स और स्पेस को लेकर के, उसमें भी हमारा स्पेस का ही काम आ रहा है, हमारे मीडिया और टेलीविजन चैनल्स तो है ही हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारा स्पेस सेक्टर इज वर्चुअली इन एवरी हाउस होल्ड, एवरी इंडियन हाउस होल्ड टुडे। और वॉरफेयर आपने देख ही लिया ऑपरेशन सिंदूर में, उसमें दो ही विभाग थे मुख्य तौर पर, एक स्पेस सेक्टर और दूसरा न्यूक्लियर सेक्टर, तो ये सारा वॉरफेयर उससे हमारी क्षमताएं। और आज ये स्थिति है कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल्स हम ना केवल इंडिजिनस बना रहे हैं बल्कि इंडिजिनस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा डिफेंस सेक्टर अधिकतर इंपोर्ट्स पर डिपेंड करता था 2014 से पहले, 2025 में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1.5 लाख करोड़ से अधिक है और हमारा एक्सपोर्ट हुआ है लगभग 23,000 करोड़ दूसरे देशों के। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल वियतनाम में जा रही है, इंडोनेशिया जा रही है, और बहुत सारे है हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स यूरोपियन देशों में, फ्रांस इत्यादि में जा रहे हैं। इसी तरह से आप देखेंगे स्टार्टअप्स में, हम जब शुरू हुए तो 350-400 थे, आज हम तीसरे दर्जे पहुंच गए लगभग 2,26,000 से अधिक
1: जी।
0: और उनके माध्यम से जो जॉब्स जनरेट हुए उनकी संख्या लगभग 24 लाख है। इसी प्रकार हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम नंबर ऑलमोस्ट 90-80 थे, अभी हम 38 आ गए। पेटेंट्स में हम नंबर 6 हैं दुनिया में, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उसमें से 55% ऐसे हैं जो रिजाइडिंग इंडियन है, बाहर जाके शोध करते थे, ये बच्चे वो हैं जिन्होंने यहीं शोध किया, यहीं पले बले और यहीं से उन्होंने पेटेंट फाइल किए। और यही कारण है कि आज विश्व हमें निगाह उठाकर देखता है, बड़ी तवक्को के साथ देखता है कि अब वो नहीं रहा कि वी आर नॉट देयर टू बी लेड, द वर्ल्ड लुक्स अप टू अस टू लीड। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा भी माइंडसेट बदला है और दुनिया का नजरिया बदला हमारे प्रति।
1: भारत टेक्नोलॉजी क्योंकि क्रिएटर बन रहा है, ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप कितना बड़ा योगदान मानते हैं, और तमाम क्षेत्र, चाहे हम क्वांटम की बात करें वो भी, और इसके अलावा रक्षा की हम बात कर रहे हैं वहां पर भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस तरह से जो नई गति है वो देते हुए नजर आ रही है अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो?
0: नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक ऐसा टूल है
1: जी
0: जो अभी इट्स नो लॉन्गर एन ऑप्शन, इट्स अ नेसेसिटी, ये तो इस्तेमाल में होगा ही, चाहे कोई भी क्षेत्र होगा, हेल्थ होगा, कम्युनिकेशन होगा, रिसर्च होगा, लेकिन वन हैज टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और हमने जो कई ऐसे प्रयोग किए हैं जहाँ हाइब्रिड मॉडल बड़े कामयाब साबित हुए, यानी जैसे हमारा सीपी ग्राम्स है, ग्रीवेंस रिड्रेसल, उसमें हम एआई के द्वारा चैटबॉट भी रखा है, एआई के द्वारा डिस्पोजल भी होता है, लेकिन डिस्पोजल के बाद शिकायतकर्ता से बातचीत वार्तालाप एक व्यक्ति करता है, उससे उसको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। इसी तरह से हमने टेलीमेडिसिन में भी कुछ प्रयोग किए हैं जहां हम एक फिजिकल डॉक्टर बिठाते हैं साथ में एआई डॉक्टर। एआई

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: ये कहानी है एक नर्स और उसकी अंतर्मन की।
3: आगे फैमिली आओ, नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमको का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय।
7: To shorten her length, however, Rubab did not do that, and in the end, it has been tucked away neatly towards square leg for a comfortable single. Mandana on to 35, India 61 for 2. Next delivery is a fuller length delivery, this time around from Tasmia Rubab, and there's a chance of a run out. However, a big desperate dive from Smriti Mandana ensures that she is home, and the run has been taken. She gets up, dusts herself off, takes her gloves off, and then gives a thumbs up to her partner at the other end, saying that I'm safe and sound, don't you worry about anything. It was on a fuller length in line with the stumps, and Harmanpreet Kaur went onto the back foot, and after that she used her wrists to close the face and dinged it towards the empty midwicket region. The bowler herself ran, picked it up and hurled it back towards the stump. Alas, she could not score a direct hit, or else Mandana might have been in trouble. The next delivery is a big Harmanpreet to hang back and swish across the line. The ball goes towards deep backward square leg, allows for a comfortable single. Overs so pretty eventful. These middle overs are turning out to be just like you predicted, Ashish.
8: जी बिल्कुल, और यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि क्या जो मोमेंटम अब इन दोनों बैटर्स को हासिल हो चुका है, क्या उसको जारी रख पाएंगे। फिलहाल अगली गेंद, और इस बार लेग स्टंप की तरफ हटते हुए सीधे बल्ले से इस गेंद को खेलने में कामयाब रही थी। हालांकि वहां पर प्रोटेक्शन है, फील्डर ने गेंद को रोका सीमा रेखा से करीब करीब 8-10 गज अंदर, लेकिन तब तक आसानी के साथ एक रन के लिए दोनों बैटर्स ने अपना छोर बदल लिया था।
7: So the score moving to 65 with that, 9.5 overs are done. Harmanpreet Kaur on 20, she is back on strike after that single that was taken by Smriti Mandhana. Last delivery of the 10th over coming up. Here comes Rubab and beats the bat. It was angled away towards the offside, and

0: impact did the Indian captain. Went for a cut shot but did not make contact. At least that is what we felt on the first look. However, Rubab has made a polite inquiry. A conversation with her captain Fatima Sana, possibly discussing the possibilities of opting for DRS. However, Fatima Sana denies it. They do not opt for DRS. Remember, two reviews per side per innings are allowed in this particular World Cup. End of the 10th over, 65 for 2 India.
1: वो 138 का है, लेकिन भारत यहां पर कम से कम 150 करना चाहेगा और देखना यह है कि क्या उस इरादे में कामयाब भारतीय टीम हो पाएगी या फिर नहीं। फिलहाल 10 ओवर की समाप्ति के बाद भारत ने 65 रन बना लिए हैं, 2 विकेट की 18 पर, जब भारत का दूसरा विकेट गिरा था उसके बाद से लेकर अब तक इन दोनों बल्लेबाजों ने देखना यह है कि इस साझेदारी को जारी रख सकते हैं। नाशरा संधू के नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद स्वीप कर दिया स्मृति ने और स्मृति के इस स्वीप के बाद जैसे ही गेंद को वहां पर फील किया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में सीमा रेखा के नजदीक, तब तक आसानी के साथ 1 रन के लिए दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदल लिया। 37 पर पहुंच चुकी हैं स्मृति अब 28 गेंदों का सामना करने के बाद और कप्तान हरमनप्रीत 22 गेंदों का सामना करने के बाद 20 के व्यक्तिगत स्कोर पर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं। हमारे स्टैटिस्टिशियन तुषार त्रिवेदी बता रहे हैं कि हरमन और मंधना ने दोनों ने ही अब तक T20 मुकाबलों में 86-86 छक्के लगा चुकी हैं। अगली गेंद और इस बार इस गेंद को कट किया लेकिन खूबसूरती के साथ वहां पर गेंद को क्षेत्र रक्षण का प्रदर्शन गुलफिरोजा के द्वारा, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। अगर जरा सी भी चूक होती तो शर्तिया 4 रन वहां पर भारत को मिल सकते थे, लेकिन फिलहाल भारत इस 1 रन के साथ संतुष्ट, हरमनप्रीत भी 1 रन के साथ संतुष्ट। 67 पर भारत 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद और इस बार ऑफ स्टंप की तरफ हटते हुए गेंद को स्वीप करना चाहते थे लेकिन गेंद की लाइन को पूरी तरह से चूक लेकर एक बार फिर से ओवर द विकेट और इस बार कदमों का इस्तेमाल करके गेंद की पिच के नजदीक पहुंचकर गेंद को वहां पर खेल दिया है वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में। 1 रन दौड़कर पूरा किया, दूसरे रन के लिए बहुत तेजी से पलट लेंगे इससे पहले कि गेंद को फील्ड किया जा सके और थ्रो किया जा सके। इन 2 रनों के साथ भारत अब 69 2 विकेट के नुकसान पर। कुछ देर पहले जो औसत रनों की रफ्तार 5.85 के आसपास मंडरा रही थी, दोनों के बीच साझेदारी भी 51 रनों की हो चुकी है 45 गेंदों का सामना करने के बाद। पहली अर्धशतकीय साझेदारी भारतीय टीम की आज इस मुकाबले में।
0: Right, fifth delivery of the 11th over and Smriti Mandana unfolds an ये लगा आभा का चौका, delivered on a good length, however Smriti Mandana shimmied down the pitch, as they say in cricket commentary often. She put her dancing shoes on, shuffled towards the leg side, and that allowed the bat to come through. Inside out she went, the ball into the gap between long off into the 40s now. Next delivery, once again she uses her feet, steps out of her crease, however Nashra Sandhu darts one into her pads in order to ensure that she cannot free her arms. However, Mandana end of the 11th, 74 for 2.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: ये मत जानिए आभा के बारे में।
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत है और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: स्मृति मानधना ने 44 रन बना लिए हैं, मात्र 6 रन दूर है अपने अर्धशतक से और अगर ये 6 रन वो बना लेती हैं तो T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में ये उनका 34वां अर्धशतक होगा। और वैसे भी दर्पण उनके बारे में कहा जाता है कि इंग्लैंड में बल्लेबाजी उन्हें खासी रास आती है, 2021 के बाद से अब तक कुल मिलाकर इससे पूर्व 6 अर्धशतक वो जड़ चुके हैं। तो नए ओवर की शुरुआत शमिंग के द्वारा, पहली गेंद और इनसाइड आउट। इस बार इस गेंद को खेल दिया, गेंद हवा में है लेकिन कोई भी फील्डर आसपास नहीं। लंबी दौड़ वहां पर क्षेत्र रक्षक लगाते हुए गेंद को एक या दो गज अंदर रोका और रिले थ्रो के द्वारा गेंद पहुंचती हुई वहां पर दौड़कर पूरे कर लिए स्मृति ने। स्मृति इन दो रनों की बदौलत अब 46 के व्यक्तिगत स्कोर पर। भारत का स्कोर बढ़कर हुआ 76 दो विकेट के नुकसान पर। 11.1 ओवर की समाप्ति के बाद बहुत अच्छा क्षेत्र रक्षण और निश्चित रूप से पाकिस्तान के खिलाड़ी इस तरह के एक बार फिर से शमीम की अगली गेंद और इनसाइड आउट। इस बार फिर से 30-10 के दायरे के अंदर जो फील्डर खड़े थे उनके ऊपर से गेंद निकाल दिया, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र से। हालांकि आलिया रियाज वहां पर पहुंची थी लेकिन उनके लिए कोई मौका नहीं था।
5: ये लगा आभा का चौका।
1: इसके साथ ही अर्धशतक पूरा हो चुका है स्मृति मानधना का। स्मृति मानधना का ये 5वां अर्धशतक है T20 विश्व कप में। और जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि 34वां अवसर कुल मिलाकर T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में, और पाकिस्तान के खिलाफ यदि बात करें तो ये उनका दूसरा अर्धशतक। क्या शानदार बल्लेबाजी की है। शुरुआत में भारत को झटके जरूर लगे। शेफाली वर्मा जो बल्लेबाजी के लिए उनके साथ आई थी प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में, वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, मात्र 6 रन बनाकर वो वापस पवेलियन लौटी थी। जेमी वर्मा का बल्ला आज ज़्यादा चला नहीं, 1 रन का उन्होंने योगदान दिया और 18 के कुल स्कोर पर वो पवेलियन की राह पकड़ बैठी। लेकिन के बाद से हरमनप्रीत कौर के साथ मिलकर स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत कौर ने शानदार बल्लेबाजी की। अगली गेंद, गेंद को लॉस्ट कर दिया और एक बाउंस के बाद गेंद सीमा रेखा से बाहर लॉन्ग ऑन की दिशा में।
5: ये लगा आभा का चौका।
1: माफ कीजिएगा, 4 रनों के लिए वहां पर गेंद सीमा रेखा से बाहर पहुंची थी एक बाउंस के बाद। और लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके, 84 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का मुजाहिरा इस समय हाथ पूरी तरह से खोल बैठी हैं इस अवसर पर वहां पर पाकिस्तान के गेंदबाज रमीम शमीम के खिलाफ। रमीम शमीम एक बार फिर से तैयार, इस बार फिर से गेंद को लॉफ्ट करने की कोशिश लेकिन गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बाहर निकली बाएं हाथ के बल्लेबाज। नहीं, पिछला पैर बिल्कुल क्रीज के अंदर मौजूद था स्मृति का और किसी तरीके की कोई क्षति की संभावना वहां पर भारत को नहीं थी। स्कोर अभी भी टिका हुआ भारत का 84 दो विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदों का आना बाकी है। उत्साह में वो डिलियां जरूर बिखेरी थी मुनीबा का। मुनीबा ने एक दबाव डालने की कोशिश की थी स्मृति के ऊपर लेकिन स्मृति का पिछला पांव अंगद की तरह क्रीज में पूरी तरह से डटा हुआ था।
6: Turn. This is the first ball that we have seen spinning in this particular match. The second thing is Smriti Mandhana had lunged forward and there was an opportunity of some sort of stumping, and in that she seems to have sprained her groin. She has currently taken her gloves off and she is down on the floor. The team physio has been summoned and Indian fans would hope that this is not anything serious. However, Pakistan might need to pull their socks up because this is some ordinary cricket. The offside field was up in the circle. Remember, there's a 25-yard circle in women's cricket and you're only allowed 4 fielders outside of it. Barring long off, everybody outside the circle was on the leg side, and with turn, Smriti Mandhana went inside out, which is one of her strengths. And Pakistan should have realized that this is the area that she will be looking to target. And yet they were bowling the off spinner and had the offside field up. So it was some ordinary cricket from them. Mandhana picked up a couple of boundaries in that direction, and after that, when they went over mid on and picked up a boundary in that direction as well. So some smart cricket. It has been a responsible innings, a class act from Smriti Mandhana all throughout the day today. She's currently batting on 54 and the good news is that the physio has done her job. Mandhana is back on her feet. 4,387 runs in T20 internationals against her name. She is the second highest scorer in all of women's T20 internationals.

0: साझेदारी की अगर बात करें तीसरे विकेट के लिए, तो वो निश्चित रूप से इस समय काफ़ी बढ़िया 67 रनों की साझेदारी 53 गेंदों का सामना करने के बाद इन दोनों बैटर्स ने अब तक भारत के लिए अर्जित कर ली है। तो ये साझेदारी यहाँ से अगर और विकराल रूप लेती है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें दर्पण निश्चित रूप से बढ़ती चली जाएंगी। शुरुआत में ज़रूर ऐसा लग रहा था कि आज कहीं ना कहीं पाकिस्तान के गेंदबाज भारतीय बैटर्स को कुछ परेशानी में डालने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही हरमनप्रीत का बीच मैदान पर पदार्पण हुआ, एक विश्वास जो टीम में आया, उसके बाद जो एक साझेदारी पनपी वहाँ पर स्मृति के साथ, उसने कहीं ना कहीं अब भारतीय समर्थक दर्शकों को एक राहत की सांस दी है। सादिया इकबाल नए ओवर की शुरुआत करती हुई पहली गेंद को खेलने की कोशिश वहां पर स्मृति मंदाना की तरफ से, लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर थी और वाइड का इशारा वहां पर आता हुआ कि ये गेंद थी और कहीं ना कहीं इस बार अपनी दिशा पर नियंत्रण नहीं रख पाई थी सादिया। इस एक अतिरिक्त रन के साथ भारत का स्कोर बढ़कर के 86, दो विकेट के नुकसान पर, 3 अतिरिक्त रन उसमें शामिल है। अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद की पिच के नजदीक पहुंचे और गेंद को लॉफ्ट कर दिया, फील्डर वहां पर मौजूद लेकिन उनके हाथों से टकराती हुई गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई 6 रनों के लिए।
1: ये लगा आभा का छक्का
0: पर थी, उनके लिए एक मौका था लेकिन अपने उस हाथों में उस गेंद को कैद नहीं कर पाए, गेंद उनके हाथों से टकराने के बाद छिटकती हुई सीमा रेखा से बाहर चली गई और इस तरह से ये एक और जीवनदान और साथ ही साथ भारत और स्मृति के लिए ये 6 रन। इन 6 रनों के साथ स्कोर बढ़कर के 93, दो विकेट के नुकसान पर। गेंद एक बार फिर से तैयार वहां पर, भारतीय इस जोड़ी ने अब तक काफ़ी मुतासिर किया है, खासतौर से स्मृति जिस तरह से अब बड़े शॉट लगा रही हैं और किसी तरह के का जो दबाव अपने ऊपर महसूस नहीं कर रही, वो भारतीय टीम के लिए निश्चित रूप से एक शुभ संकेत है। स्मृति दो बारी ड्रॉप हो चुकी है, 27 के व्यक्तिगत स्कोर पर और फिर 55 के व्यक्तिगत स्कोर पर, दो जीवनदान। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्मृति ने अब तक भारत के लिए 62 रन अर्जित किए हैं 40 गेंदों का सामना करने के बाद। सादिया की अगली गेंद और इस बार हरमनप्रीत ने बहुत ही आसानी के साथ पैडल स्वीप के अंदाज में गेंद को खेल दिया फाइन लेग की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद नहीं है, गेंद सीमा रेखा को जाकर टकराती हुई 4 रनों के लिए।
1: ये लगा
0: ने वहां पर कोशिश जरूर की थी, दौड़ जरूर लगाई थी लेकिन गेंद की रफ्तार उनकी रफ्तार से ज्यादा तेज थी। सादिया के इस ओवर में पहली गेंद वाइड थी और उसके बाद बल्ले से अब तक 11 रन आ चुके हैं, यानी कि कुल मिलाकर 12 रन अब तक इस ओवर में भारतीय बैटर्स बटोर चुके हैं। फातिमा साना थोड़ा सा निराश होती थी, पाकिस्तान को एक अच्छी शुरुआत जरूर मिली थी लेकिन शानदार प्रदर्शन स्मृति और हरमनप्रीत कौर के द्वारा और इस बार खूबसूरती के साथ गेंद को पॉइंट और कवर के बीच में से प्लेस करते हुए 4 रन हासिल कर लिए हरमनप्रीत कौर ने।
1: ये लगा आभा का चौका,
0: क्या बेहतरीन अंदाज में इस चौके को हासिल किया। 30-10 के दायरे के अंदर 4 फील्डरों की एक लंबी कतार मौजूद थी लेकिन उनके बीच में पॉइंट और कवर क्षेत्र के बीच में गेंद को प्लेस करते हुए उस चौके को अपने पक्ष में किया। इस चौके की मदद से स्कोर बढ़कर के अब 100 रनों का आंकड़ा भारतीय टीम पार कर चुकी है। 12.4 ओवर की समाप्ति के बाद विकेट अभी भी उसके 8 सुरक्षित हैं। सादिया की अगली गेंद इस बार थोड़ा सा फ्लाइटेड, कदम आगे निकलकर इस गेंद को ड्राइव किया लेकिन मिड ऑफ की पोजीशन पर फील्डर वहां पर मौजूद है, गेंद को वहां पर फील्ड कर लिया जाएगा लेकिन 1 रन जरूर मिल जाएगा हरमनप्रीत को। लगभग 75 किलोमीटर की रफ्तार की गेंद थी सादिया की। सादिया की सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन उनके पास है और अपनी गति में जिस तरह से वो परिवर्तन करती है वो देखते ही बनता है और बहुत ज़्यादा गति नहीं करती अपनी गेंदबाजी में जिससे बैट खेलता है। इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक लेग स्टंप की तरफ हटते हुए स्मृति का, लेकिन शानदार फील्डिंग कप्तान वहां पर फातिमा साना के द्वारा जो रन कामयाब रही फातिमा साना, बल्कि 2 रन वहां पर लिए अंतिम गेंद पर और इन 2 रनों के साथ स्कोर भारत का बढ़कर के अब 104, दो विकेट के नुकसान पर।
2: रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।

0: माँ, जानिए आभा के बारे में।
1: आभा
0: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
2: Coming of it, Pakistan had brought Sadia Iqbal back because they understood that they need a wicket, they need to break this partnership. However, India have put their foot on the gas pedal. They are accelerating and they are looking to run away with it. Last two overs in totality have produced 30 runs. Smriti Mandhana on 64 of 41 and Harmanpreet Kaur, who was scoring at less than runner ball before that over, has also now upped the ante. Shamim is given another over, which is an interesting ploy. They have the option of Nashra Sandhu, but looks like Pakistan are reluctant to bowl the left-arm spinner to Smriti Mandhana, who is ready to take everything on now. Off-spinner to Harmanpreet Kaur and almost produces a chance. This was on a drivable length, and Harmanpreet Kaur did not use her feet. Rather, she flayed her hands away from her body, got a bottom edge, a thick bottom edge, and the ball deflected onto her back leg. Luckily, not onto the stumps. Hence, the partnership is still intact. Next delivery, she uses her feet. It was delivered on a good length near the off stump. However, Harmanpreet Kaur was able to use a vertical bat in order to push it down to long on and pick up a comfortable single. With that, the Indian captain has moved to 31 of 28. 105 for 2 are India. Pakistan have used 5 bowlers so far. Sadia Iqbal, Fatima Sana, Tasnia Rubab, Ramin Shamim and flexibility going towards the death overs. Now around the wicket to the left-hander comes Ramin Shamim. Delivers this one outside off and Smriti Mandhana was almost expecting it. Hence she shuffled towards the top edge of the bat and then clattered into the grill of her helmet. Concussion test following. Yes, indeed, the team physio is out in the middle going through the protocols. He would be asking Smriti Mandhana a few questions, making sure that she's not showing any symptoms of concussion. But the replay on my monitor shows an interesting thing, that Ramin Shamim released this one along with the seam, which means she wasn't looking to spin the ball on that occasion, because what we saw previously, that whenever she has tried to spin the ball and delivered it outside the off stump, Smriti Mandhana has gone inside out and hit her over the cover or extra cover region very skillfully, in a very exquisite, very stylish manner. Therefore, she's looking to bring the ball into the left-hander, but almost as if Mandhana expected it, and hence she made that execution, yes, but the shot selection was spot on.
3: जी हाँ, एक अच्छा द्वंद्व गेंद और बल्लेबाजी के बीच में नजर आ रहा है इस समय बर्मिंगम के एजबेस्टन के मैदान पर। और भारत ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अब तक 105 रन बनाए हैं 2 विकेट के नुकसान पर 13.3 ओवर की समाप्ति के बाद। 64 रन बनाकर स्मृति मांधना खेल रही हैं। 42 गेंदों का सामना करने के बाद उन्होंने ये रन बनाए हैं और 8 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। लगभग 152 का स्ट्राइक रेट उनका है। और हरमनप्रीत कौर, जो कि टीम की कप्तान हैं, 31 रन 28 गेंदों का सामना करते हुए उन्होंने अब तक बनाए हैं 4 चौके, उसमें शामिल हैं, और 110 के आसपास का स्ट्राइक रेट उनका भी है। दोनों के बीच साझेदारी की यदि बात करें तो बढ़िया साझेदारी अब तक दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में तीसरे विकेट के लिए पनप चुकी है। 87 रनों की साझेदारी, 62 गेंदों का सामना करते हुए इन दोनों बैटर्स ने भारत की टीम के लिए यहाँ पर अब तक बनाने में कामयाबी हासिल की है, जिसकी वजह से भारत अब एक बेहतर स्थिति में पाकिस्तान के खिलाफ इस मुकाबले में नजर आ रहा है। अगर आप भारत और पाकिस्तान महिला टीमों के बीच T20 मुकाबलों की बात करें तो कुल मिलाकर दोनों के बीच इससे पूर्व 16 मुकाबले हुए हैं, जिसमें 13 भारत के पक्ष में और 3 पाकिस्तान के पक्ष में। और T20 विश्व कप की यदि बात करें तो 8 कुल मुकाबलों में इससे पूर्व भारत ने 6 और पाकिस्तान ने 2 मुकाबले जीते हैं। तो कुल मिलाकर अगर कागजों पे आप देखते हैं दर्पण, तो भारत का पलड़ा भारी है। और जैसा कि पहले भी अनुमान लगाया जा रहा था इस मैच के

0: शुरुआत से शुरू होने से पूर्व कि भले ही चिर प्रतिद्वंदी हैं भारत और पाकिस्तान की टीम, लेकिन इस मैच में पलड़ा भारत का ही भारी रहने वाला है। हालांकि शुरुआती झटके भारत को जरूर लगे, लेकिन उसके बाद स्मृति मंदाना ने और हरमनप्रीत कौर ने अपनी टीम के लिए पारी को बखूबी संभाला और जिस तरह से उन्होंने अब तक 87 रनों की साझेदारी कर ली है तीसरे विकेट के लिए, भारत अब एक बेहतर स्थिति में इस मुकाबले में नजर आ रहा है। ड्रिंक्स इंटरवल बीच मैदान पर चलता हुआ थोड़ी ही देर में वो संपन्न होगा और 13.3 ओवर की समाप्ति के बाद भारत ने 7.78 रन प्रति ओवर के हिसाब से अब तक 105 रन बटोरे हैं दो विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी की यदि बात करें तो गेंदबाजी में कुल मिलाकर 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल पाकिस्तान।
1: आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के अंतर्गत एस्बेस्टन बर्मिंघम में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मैच का सीधा प्रसारण आप सुन रहे थे हमारे दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:10 हो चुके हैं। दोस्तों आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण। ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं गौरव श्रीवास्तव।
2: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूँ गौरव श्रीवास्तव। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब भी बात होती है तो हमने देखा है कि बीते एक दशक में, या यूं कहें कि जब से मोदी सरकार आई है, बीते 12 वर्षों में लगातार इसमें प्रगति देखने को मिल रही है। और ये प्रगति इसलिए भी है क्योंकि लगातार जो अलग अलग तरीके से इसमें इनिशिएटिव्स लिए गए और लगातार जो इस पर फोकस किया गया, उससे आज जो क्रांति आई है वो बदलते दौर की एक नई तस्वीर पेश कर रही है। इन तमाम अहम पहलुओं पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या इसके अलावा स्पेस सेक्टर हो, इसके अलावा अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं या क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये सब कुछ इतना बड़ा हुआ है बीते 12 वर्षों में, अभी हाल में कहां पे है और किस तरह से जो फ्यूचरिस्टिक प्लान है वो क्या कुछ कहता है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। सर बहुत स्वागत आपका।
3: धन्यवाद।
2: पहला सवाल सर यही है, 12 साल और उसके बाद जो लगातार इनिशिएटिव्स लिए गए, बहुत बड़ी गति मिलती हुई नजर आई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, कैसे इस सफर को देखते हैं और क्या बड़ा होने वाला है जिससे भविष्य और ज्यादा बेहतर भारत का नजर आता है?
3: जैसे कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जहां तक विज्ञान को लेकर के अगर हम बात करें या साइंस टेक्नोलॉजी की, तो एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ
2: जी।
3: उसका प्रमुख बिंदु एक तो ये था कि इसको बहुत ज्यादा प्राथमिकता हासिल हुई। पहले साइंस टेक्नोलॉजी संबंधित विषयों को बहुत ज्यादा प्राथमिकताएं नहीं मिलती थी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की तरफ से, और प्रधानमंत्री जी स्वयं इसमें रुचि लेने लगे। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया, ये समझते हुए कि अगर आज की दुनिया में हमें इससे आगे बढ़ना है तो हम साइलोज में नहीं चल सकते
2: जी।
3: और तीसरा, विज्ञान में जहां ईज ऑफ रिसर्च वो तो लाजिम अनिवार्य है, उसके साथ साथ अंततः उसका लक्ष्य है ईज ऑफ लिविंग फॉर अ सिटीजन, तो उसको सिटीजन सेंट्रिक भी बनाया गया
2: जी।
3: हमारे बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव गत 12 वर्षों में ऐसे रहे हैं जिनका सीधा सीधा ताल्लुक नागरिक के साथ है या नागरिक के जीवन के साथ है, और जिसका परिणाम यह हुआ है कि आज मेन स्ट्रीम मीडिया, जो पहले विज्ञान संबंधी समाचारों को या गतिविधियों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता नहीं देता था, उसमें भी जिस तरह से हमारा स्पेस की अचीवमेंट्स हुई, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि स्पेस हैज गिवन अस स्पेस इन मेन स्ट्रीम मीडिया, चंद्रयान के माध्यम से। अरोमा में जब लेवेंडर आया, अभी हाल ही में 3-4 या 2 या 3 दिन का कैंप था मुंबई में
2: जी,
3: तो हमारे युवा मौसम होता है तो बहुत दिक्कत आती है फ्लाइट्स में
2: जी,
3: पायलट को भी दिक्कत आती है, यात्रियों को भी असुविधा होती है, तो उसमें बहुत सारी बेहतरी हो कि इस प्रकार से फॉग की प्रेडिक्शन और ज्यादा एक्यूरेट प्रिसाइज हो टाइमिंग, तो ये चूंकि नागरिकों के साथ संबंधित ये विषय है। इसी प्रकार चाहे आप हमारा गवर्नेंस का ले लीजिए, तो हमारा सीपी ग्राम मॉडल है जिसको हमने एआई चैटबॉट के साथ जोड़ दिया, अभी 2 ही दिन पहले की बात है, तो उससे भी आम नागरिक, जहां एक जमाने में 2014 से पहले कुल मिलाकर के हमारे यहां सरकार में 2 लाख शिकायतें आती थी पूरे हिंदुस्तान में साल भर में, आज वही संख्या बढ़कर के 25-30 लाख हो गई, क्योंकि लोगों की रुचि बढ़ी, क्योंकि वी वर प्रॉम्प्ट, वी वर रिस्पॉन्सिव, वी आर फॉलोइंग टाइम लाइन। हमारे 95-97% जहाँ पुराने जमाने में 2-2.5 महीने लगते थे अगर जवाब आए, जवाब कई बार आता ही नहीं था, वहाँ हमने ये सुनिश्चित किया कि हर ग्रीवेंस का जवाब भी आएगा, एआई ड्रिवन भी होगा और कोई ह्यूमन बात भी करेगा उससे, और उसकी टाइम लाइन घटा करके 12-13 दिन कर दी गई और बहुत जल्दी एक हफ्ता हो जाएगी।
2: बिल्कुल सर, इसके अलावा

0: हमने देखा है कि जब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो भी हमें हाल ही में देखा कि बहुत बड़ा कीर्तिमान और उपलब्धि हासिल करते हुए नजर आया, कितना बड़ा चैलेंज था क्योंकि होमी बाबा ने इसकी नींव बहुत पहले रखी थी कि इसको अलग अलग फेजेस में किया जाएगा, पहला दूसरा फेज और उसके बाद तीसरे की ओर आगे बढ़ना थोरियम क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा है। ये मात्राएं किस तरह से दिखाती है कि भारत का जो बढ़ता हुआ कदम है वो और ज्यादा सशक्त होता हुआ नजर आ रहा है।
1: बहुत अच्छी बात कही, बल्कि मैंने उस दिन जिस दिन हमारा ये टारगेट अचीव हुआ तो मैंने ये कहा था कि होमी बाबा ने जो स्वप्न देखा था उसकी पूर्ति मोदी जी के हाथों से हुई है। The vindication of Homi Baba's dream has happened through Prime Minister Modi. और अगर आप जरा गंभीरता से गहराई से सोचे तो समझ में आएगा कि होमी बाबा कितने दूरंदेश व्यक्ति थे, हिंदुस्तान की परिस्थितियों को समझते हुए,
0: बिल्कुल
1: हमारे साधनों की लिमिटेशंस को समझते हुए उन्होंने हमें एक थ्री स्टेज प्रोग्राम दिया। जो तीन स्टेजेस उन्होंने दी थी उसमें धीरे धीरे प्रगति हो, उस तरह से कैसे उन्होंने तय किया कि पहले स्टेज में हम प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का इस्तेमाल करेंगे। हैवी वाटर होता है थोड़ा सा अलग किस्म का, जैसे आम पानी को आप H2O कहते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये होता है D2O, ब्यूट्रोस ऑक्साइड। लेकिन उसके में लाभ ये रहता है कि उसमें आम यूरेनियम इस्तेमाल होता है जो आपको पहाड़ों से या कोस्टल एरिया से मिलता है, उसमें कुछ एनरिचमेंट नहीं करनी ट्रीटमेंट, तो उसको इस्तेमाल से वो यूरेनियम-239 इस तरह से,
0: उसकी मात्रा भी सर कम है,
1: मात्रा भी कम है, और उसका जो स्पेंट फ्यूल निकलता है प्लूटोनियम। तो होमी बाबा का ये तस्वुर था, ये कल्पना थी कि जब हम उसमें थोड़ी सी महारत हासिल कर लेंगे तो उस प्लूटोनियम जो वहां का स्पेंट फ्यूल निकलेगा उसी को हम दूसरी स्टेज में इस्तेमाल करेंगे। कैसे? उसको यूरेनियम-239 के साथ जोड़ के जो थोड़ा सा एनरिच्ड है
0: जी।
1: तो एनरिच्ड यूरेनियम को जब हम प्लूटोनियम के साथ जोड़ेंगे, जिसे विज्ञान की भाषा में मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल भी कहा जाता है
0: जी,
1: तो उससे एक रिएक्टर के लिए एनर्जी भी इजाद होगी और साथ ही साथ उसी रिएक्टर के बैग में हम थोरियम रख देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में जैसे आपने कहा कि सबसे अधिक स्टोर दुनिया का हिंदुस्तान में, ऑलमोस्ट 25% ऑफ द थोरियम इज फाउंड इन इंडिया और मेनोजाइट हमारा मिनरल उसका एक हिस्सा है। तो उस थोरियम को जब हम बैग में रखेंगे तो जब वो रिएक्टर का दोनों यूरेनियम और प्लूटोनियम अपना काम कर रहे होंगे एज मिक्स फ्यूल, तो प्लूटोनियम से जो उसमें से कुछ एक न्यूट्रॉन्स निकलेंगे पॉजिटिव न्यूट्रॉन, उनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा थोरियम एज ए रिजल्ट ऑफ सम सर्टेन केमिकल सीक्वल ऑफ रिएक्शंस, और इसको एक अलग किस्म के फ्यूल में कन्वर्ट करेगा जो होगा यूरेनियम-233 जो एनरिच्ड नहीं है लेकिन है वो ईंधन ही, फ्यूल ही है। और इस तरह से थोरियम से प्राप्त हुआ, थोरियम से पैदा किया गया यूरेनियम हमें मिलेगा जो हम तीसरी स्टेज में इस्तेमाल करेंगे, और जब हम उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे तो दूसरों पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी क्योंकि ये थोरियम तो हमारे घर में मौजूद है। तो इस तरह से किया था, और ये जो आपने कहा अप्रैल मास में हम दूसरी स्टेज पर पहुंच गया जहाँ प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इजाद किया गया और इसकी धूम सारी दुनिया में है। साथ ही साथ चूंकि शांति एक्ट भी आया, वो भी प्रधानमंत्री जी के ही हस्तक्षेप से हुआ, बिकॉज पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के लिए जरूरत बात होती है कि न्यूक्लियर सेक्टर को खोल देना प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, और किसी ने
0: इसकी प्राइवेट सेक्टर के लिए जब खोला गया, न्यूक्लियर का सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए जब मर्ज होता हुआ नजर आ रहा है और खोला गया, ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मानते हैं उन लोगों के लिए जिनके बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं जो इसमें कुछ करना चाहते हैं?
1: बिल्कुल, ये आपने अच्छा किया पूछा। पहली बात तो ये है कि एक बहुत क्रांतिकारी निर्णय था, बहुत कम देश ऐसे हैं दुनिया में जिन्होंने अपने न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर के लिए खोला है
0: जी।
1: तो इसके लिए भी जैसे मैंने कहा, इट रिक्वायर्स पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल करेज, पॉलिटिकल कन्विक्शन, वो मोदी जी के कारण संभव हुआ। अब जब खुल गया तो कई लोग जो शायद सिनिसिज्म की वजह से कहते हैं या आलोचना की दृष्टि से कहते हैं कि साहब अब बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज के लिए खोला गया, ऐसा नहीं है। बल्कि जो हमने शांति एक्ट लाया है उसमें अलग अलग स्लैब्स रखी है, अगर आप 1000 मेगावाट का लगाना चाहे तो आपकी स्लैब कम है, बड़ा लगाना चाहे ज्यादा 100 मेगावाट का लगाएं, अब तो स्मॉल रिएक्टर्स हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स भी हैं, दूसरे स्मॉल रिएक्टर्स जो 200 मेगावाट से भी कम कैपेसिटी के होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बड़ा इकोसिस्टम बनाया गया है पिछले 12 साल में जिसको आप कंबाइन करके कुछ एक लोग अगर युवा मिल जाएं, एक ग्रुप बनाए स्टार्टअप का एंड देन मैच्योर इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। तो जैसे हमारा RDI फंड भी है, 50% सरकार की ओर से मिलता है बहुत कम इंटरेस्ट पर, तो आप एक छोटा रिएक्टर भी लगा सकते हैं। यानी दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि शांति एक्ट के आने के बाद और प्राइवेट सेक्टर खोलने के बाद, बड़े हाउसेस तो अलग बात है लेकिन जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, स्टार्टअप्स के, एंटरप्रेन्योर्स के, उनके लिए भी लाइवलीहुड रोजगार का एक नया साधन और बड़ा ल्यूक्रेटिव साधन होगा। और आने वाले जमाने में इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये युग है, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का होना लाजिम रहेगा ही रहेगा।
0: बिल्कुल सर, एक सवाल और, एक बड़ी उपलब्धि जो लगातार हम देख रहे हैं कि आपके नेतृत्व में भी आगे बढ़ती हुई नजर आई है, क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर, उसके नेटवर्क को लेकर। कहां तो 8 साल का एक रोड मैप तैयार किया गया था, 2000 किलोमीटर का, 1000 किलोमीटर 2 साल के अंदर अंदर पूरा हो गया। क्या चैलेंजेस इसके पीछे और कैसी उपलब्धि इतनी जल्दी हासिल की गई?
1: क्वांटम मिशन हमने लॉन्च किया था सन 2023 में और 8 साल के लिए एक प्लान बनाया था। उस समय भी मैंने ये कहा था कि क्वांटम मिशन की लॉन्चिंग मात्र फिजिकल लॉन्चिंग नहीं है, इसमें एक बड़ा सिंबॉलिक मैसेज भी गया है। वो ये कि हम उन चंद एक 4-5 देशों में हैं जिनका क्वांटम मिशन है। यानी वो जमाना जाता रहा, एक दुनिया भर में ये पैगाम गया कि वो जमाना जाता रहा जब कोई इनिशिएटिव कोई और देश लेता था और फिर 10-15 बरस के बाद हम उसका अनुसरण करते, चाहे वो टेलीविजन था, चाहे वो इंटरनेट था, चाहे वो मोबाइल थे जो अमरीका में 1950 के दशक में, यहाँ पे 1970 के दशक में पहुंचे, 80 के। अब हम बराबर चल रहे हैं तो क्वांटम में। और फिर हमने जब 8 साल का टारगेट बनाया, क्योंकि उसके 4 verticals हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, क्वांटम मटेरियल्स, तो उसके लिए 8 साल के अलग अलग टारगेट्स बनाए गए। और जैसे आपने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण रहता है कम्युनिकेशन, क्योंकि एनक्रिप्टेड सिक्योर, हालांकि अभी भी आपके व्हाट्सएप इनक्रिप्टेड है लेकिन वहां ऐसा होगा कि वो संभव ही नहीं होगा उसको अनक्रिप्ट करना। डिफेंस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, मीडिया की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। उसमें हमने टारगेट रखा था कि हम 2000 किलोमीटर तक क्षमता विकसित करेंगे 8 वर्षों में क्वांटम कम्युनिकेशन करने की, लेकिन उसमें से आधी जो 1000 है हमने 2 या 3 सालों में कर ली। यानी हम 8 साल का टारगेट हो सकता है 8 साल से पहले ही कर ले और हम उससे आगे बढ़ जाए।
0: बिल्कुल सर, एक सवाल और आता है कि जैसे हम बायोटेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं, क्योंकि हमने तमाम क्षेत्रों को देखा कि किस तरह से उनमें प्रगति नजर आई, बायोटेक्नोलॉजी में जब हम उम्मीद प्रोग्राम की बात करते हैं, किस तरह से ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा किफायती होगा, उनको सुविधा पहुंचाता हुआ नजर आएगा जो जेनेटिक डिजीजेस से कहीं ना कहीं 2-4 हो रहे हैं और कई बार टेस्ट भी कराते हैं लेकिन पता नहीं चलता। क्या है सर ये उम्मीद प्रोग्राम और कैसे लोगों को फायदा होगा?
1: ये बात करने से पहले मैं ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि ये इसलिए संभव हुआ कि वहां पर भी अभी कोई 2-3 साल पहले हमने बायो E3 पॉलिसी लाई, उसमें भी हमारी पहल है। बहुत चंद एक देशों में जिनकी एक डेडिकेटेड बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी है, बायो E3, अर्थात बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एनवायरमेंट, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एम्प्लॉयमेंट। और वो भी तभी संभव हुआ जब प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री जी के आगे रखी गई तो उन्होंने अपने बाकी साथियों को भी ये समझाया कि आज शायद इसका महत्व ना समझ आए लेकिन कल हम किसी देश से पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये भी दुनिया भर में अर्थशास्त्रियों का भी मानना है कि आने वाली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बायोटेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी, जेनेटिक ड्रिवन होगी, रीसाइक्लिंग होगा, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स का होगा, यानी इकोनॉमी का शिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग से हटकर के सर्कुलर की तरफ चला जाएगा, जेनेटिक्स की जाएगा। और उसमें भी हमने पहल कर ली है। और हमारा हिंदुस्तान ऐसा है कि यहाँ पर जीन्स को ले तो बड़ी डाइवर्सिटी है, हमने उसमें भी सीक्वेंसिंग 10,000 देशवासियों की करने में हम अभी तक सफल हो चुके हैं। हमारा इनिशियल टारगेट है अबाउट 1 मिलियन। इसी प्रकार रेयर डिजीजेस, वो जेनेटिक डिजीजेस जो पैदाइश से होती हैं, कभी कभी उनके सिम्टम्स हो सकता है पैदाइश के समय या जन्म के समय जाहिर ना हो, थोड़ा आगे चल करके हो, क्योंकि इन बीमारियों की संख्या बहुत कम हो रहती है, बहुत कम, चाहे वो सिकल सेल एनीमिया है, चाहे वो नी वेन पिक डिजीज है, इस तरह के, इसलिए इसको प्राथमिकता भी कम मिलती थी, इसलिए इसके डायग्नोसिस की सुविधाएं भी दुर्लभ थी, इसलिए इसकी दवाई भी बहुत महंगी थी। लेकिन कोई छूट ना जाए कोई भी नागरिक हमारे शोध से, हमारी सेवाओं से, तो इसलिए उम्मीद का कार्यक्रम शुरू किया जिसके तहत लगभग अभी भी 3 लाख ऐसे लोग हैं जिनको इसका लाभ पहुंचा है
0: जी।
1: और उसमें हम अलग अलग चरणों में उसमें जो रेयर जेनेटिक डिजीज है उनमें किस तरह से सहयोग दिया जा सके मरीज को, डायग्नोसिस कैसा हो, अर्ली डिटेक्शन हो, उसके बाद टेस्ट की क्या फैसिलिटी रहे, औषधियों की क्या रहे, उसको लेकर के
0: जी।
1: और इसी तरह से हमने बायोटेक्नोलॉजी का अगर आप देखें तो बायो E3 पॉलिसी के ही तहत हिंदुस्तान का सबसे पहला एंटीबायोटिक भी हमने याद किया है। अभी तक जितने एंटीबायोटिक थे, जो पहला एंटीबायोटिक आया था सन 1948 के लगभग, पेंसिलिन, उस समय पाउडर का था, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में उसका पाउडर थोड़ा इस्तेमाल किया गया था वुंड्स पे, तो वहां से पता चला कि सभी इन्फेक्शन के लिए फायदेमंद रहता है। उसके बाद इसके इंजेक्शन बने, बाद में टेबलेट बनी, तो उसको इस समय क्वीन ऑफ ड्रग्स कहा जाता था। लेकिन तब से लेकर के जितनी भी सक्सेसिव जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स हुई है, चाहे वो पेंसिलिन के बाद क्लोरोफेनिकॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, जेटअप, वो सारी बाहर से सॉल्ट आते हैं। पहली बार हमने यहाँ ट्रायल किया, यहाँ सॉल्ट ट्रायल किया और प्राइवेट पार्टनर के साथ उसकी हम मार्केटिंग कर रहे हैं।
0: सर अब बात करेंगे स्पेस की, क्योंकि स्पेस में बहुत सारा काम हुआ है, गगनयान मिशन पर सबसे ज्यादा नजर है, क्या तैयारियां उसको लेकर, और बीते दिनों में जो हमने देखा चाहे चंद्रयान मिशन हो या इसके अलावा अलग अलग जो मिशन लॉन्च किए जा रहे हैं उसमें कितनी प्रगति मिलती हुई नजर आ रही है जो गगनयान मिशन को बहुत सक्सेसफुल बनाए।
1: मुझे लगता है कि स्पेस सेक्टर में सबसे पहला क्रांतिकारी मोड़, जैसे एटॉमिक को लेकर के आपने शांति की बात की, वो था 5 बरस पहले, जबकि जैसे मीडिया ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज अनलॉक्ड स्पेस सेक्टर, पहली बार स्पेस को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया गया, क्योंकि हमारा ये मानना है कि विज्ञान शोध टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कमर्शियलाइजेशन तभी संभव है कि आप प्राइवेट सेक्टर को पहले दिन से ही साथ लेके चलें।
0: सर ये इससे भी कनेक्टेड है जो

0: इक्विपमेंट, रॉकेट्स भी लोग जो बना रहे
1: निश्चय
0: हैं अलग अलग
1: निश्चय
0: कंपनी।
1: निश्चय।
0: जी
1: अब देखिए, आज से 5 साल पहले हमारा स्पेस इकोनॉमी हिंदुस्तान की कोई बहुत ज्यादा उल्लेखनीय नहीं थी। आज हमारी स्पेस इकोनॉमी लगभग 9 बिलियन US डॉलर और इतनी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है कि आंकलन ये लगाया जाता है, हमारी जो प्रोजेक्शंस इंडिकेट करती हैं कि अगले 8-10 सालों में हम 5-6 गुना बढ़ करके 40-45 बिलियन डॉलर हो जाएंगे, जिसका अर्थ ये हुआ कि स्पेस इकोनॉमी विल बी एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी एज वी मूव टूवर्ड्स 2047। और हमारा स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप सिंगल डिजिट हुआ करते थे, आज 400 से बढ़ गए। और एक हाल ही में शुरू हुआ स्टार्टअप हमारा यूनिकॉर्न भी हो गया पिछले कुछ दिन पहले। अब प्राइवेट सेक्टर में रॉकेट्स भी बनाए जा रहे हैं, लॉन्चिंग्स भी हो रही हैं, और वो इसलिए संभव हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर का सहयोग पब्लिक सेक्टर के द्वारा हो रहा है और दोनों एक समन्वय बना करके कोलैबोरेटेड अप्रोच के साथ चल रहे हैं। और आने वाले समय में हिंदुस्तान की ये भी खासियत है, हमारे रॉकेट्स तो जा ही रहे हैं, रॉकेट से खबर हमारी बड़ी ज्यादा बनती है, जैसे चंद्रयान के लेकर के, इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग साइट। लेकिन हिंदुस्तान की ये विशेषता है कि हमने स्पेस सेक्टर को जितना स्पेस मिशन के लिए इस्तेमाल किया है, उससे अधिक नागरिक जीवन में सुविधा लाने के लिए, ईज ऑफ लिविंग। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के सुझाव पर गति शक्ति शुरू किया। गति शक्ति इज अ ग्लोबल मॉडल जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में काम आता है, उसकी मॉनिटरिंग में, उसकी टाइमलाइंस को निर्धारित तरीके से संभालने में, उसकी जो बाधाएं हैं, तो ये गति शक्ति इज अ स्टोरी। हमारा लैंड फार्म्स को लेकर के जो कार्यक्रम है, ड्रोन्स और स्पेस को लेकर के, उसमें भी हमारा स्पेस का ही काम आ रहा है। हमारे मीडिया और टेलीविजन चैनल तो है ही है। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारा स्पेस सेक्टर इज वर्चुअली इन एवरी हाउस होल्ड, एवरी इंडियन हाउस होल्ड टूडे। और वॉरफेयर आपने देख ही लिया ऑपरेशन सिद्धूर में, उसमें दो ही विभाग थे मुख्य तौर पर, एक स्पेस सेक्टर और दूसरा न्यूक्लियर सेक्टर। तो ये सारा वॉरफेयर, उससे हमारी क्षमताएं। और आज ये स्थिति है कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल्स हम ना केवल इंडिजिनस बना रहे हैं बल्कि इंडिजिनस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा डिफेंस सेक्टर अधिकतर इंपोर्ट्स पर डिपेंड करता था 2014 से पहले, 2025 में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1.5 लाख करोड़ से अधिक है और हमारा एक्सपोर्ट हुआ है लगभग 23,000 करोड़ दूसरे देशों के। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल वियतनाम में जा रही हैं, इंडोनेशिया जा रही हैं, और बहुत सारे है हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स यूरोपियन देशों में, फ्रांस इत्यादि में जा रहे हैं। इसी तरह से आप देखेंगे स्टार्टअप्स में, हम जब शुरू हुए तो 350-400 थे, आज हम तीसरे दर्जे पहुंच गए, लगभग 2,26,000 से अधिक, और उनके माध्यम से जो जॉब्स जनरेट हुए हैं उनकी संख्या लगभग 24 लाख है। इसी प्रकार हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम नंबर ऑलमोस्ट 90-80 थे, अभी हम के 38 आ गए। पेटेंट्स में हम नंबर 6 है दुनिया में, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उसमें से 55% ऐसे हैं जो रिजाइडिंग इंडियन है, बाहर जाके शोध करते थे, ये बच्चे वो हैं जिन्होंने यहीं शोध किया, यहीं पले बले और यहीं से उन्होंने पेटेंट फाइल किए। और यही कारण है कि आज विश्व हमें निगाह उठाकर देखता है, बड़ी तवक्को के साथ देखता है। अब वो नहीं रहा कि वी आर नॉट देयर टू बी लेड, द वर्ल्ड लुक्स अप टू अस टू लीड। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा भी माइंडसेट बदला है और दुनिया का नजरिया बदला हमारे प्रति।
0: भारत टेक्नोलॉजी क्योंकि क्रिएटर बन रहा है, ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप कितना बड़ा योगदान मानते हैं, और तमाम क्षेत्र, चाहे हम क्वांटम की बात करें वो भी, और इसके अलावा रक्षा की हम बात कर रहे हैं वहां पर भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस तरह से जो नई गति है वो देते हुए नजर आ रही है, अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो?
1: नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक ऐसा टूल है
0: जी,
1: जो अभी इट्स नो लॉन्गर एन ऑप्शन, इट्स अ नेसेसिटी। ये तो इस्तेमाल में होगा ही, चाहे कोई भी क्षेत्र होगा, हेल्थ होगा, कम्युनिकेशन होगा, रिसर्च होगा, लेकिन वन हैज टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और हमने जो कई ऐसे प्रयोग किए हैं जहां हाइब्रिड मॉडल बड़े कामयाब साबित हुए, यानी जैसे हमारा सीपी ग्राम्स है, ग्रीवेंस रिड्रेसल, उसमें हम एआई के द्वारा चैटबॉट भी रखा है, एआई के द्वारा डिस्पोजल भी होता है, लेकिन डिस्पोजल के बाद शिकायतकर्ता से बातचीत वार्तालाप एक व्यक्ति करता है, उससे उसको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। इसी तरह से हमने टेलीमेडिसिन में भी कुछ प्रयोग किए हैं जहां हम एक फिजिकल डॉक्टर बिठाते हैं साथ में एआई डॉक्टर। एआई का लाभ ये है कि अगर आप चिकित्सा जगत को ले लें, या जीन्स की बात कर रहे थे, तो इतने सारे जीन्स को स्क्रीन करने में हमें कई दशक लग जाएंगे,
0: बिल्कुल सर,
1: यहाँ मिनटों में बात हो जाती है। ईज ऑफ वर्किंग बहुत ज्यादा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं, चाहे लार्ज लैंग्वेज मॉडल, स्मॉल लैंग्वेज, उसका हमने इस्तेमाल किया है, एग्रीकल्चर के लिए अलग बनाए हैं, मौसम विभाग के लिए अलग मॉडल्स बनाए हैं, वो भी चूंकि मौसम विभाग भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उसमें हमने अब नव कास्ट का रखा है। नव कास्ट यानी आप घड़ी देख के 3 घंटे का प्लानिंग कर सकते हैं, अगर आपने कहीं मीटिंग पे जाना कि छतरी लेके जाएं कि ना जाएं, और हमने शुरू उसको किया जो ज्यादा रेन प्रोन एरियाज थे, जैसे मुंबई है, चेन्नई है। इसी प्रकार अब नव कास्ट के ही तर्ज पर स्काई कास्ट शुरू किया, जो फॉग डिटेक्शन कर सकता है, जो एयरक्राफ्ट है उनके लिए। तो हर क्षेत्र में इस तरह से टारगेट्स रखे गए कि हम दुनिया के दूसरे देशों की बराबरी कर सके। और इस वक्त अगर दुनिया में हिंदुस्तान की साख बड़ी है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान भारत की टेक्नोलॉजी इनोवेशंस में तरक्की का है।
0: सर, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ से किस तरह से आप इसको देखते हैं और ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ से क्या कदम उसकी ओर बढ़ाए जा रहे हैं?
1: ग्रीन हाइड्रोजन में भी हमारा मिशन है। इस सरकार ने 2023 में हमने नेशनल क्वांटम मिशन शुरू किया, 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, उसमें भी हमारे चार अलग अलग हैं, AI कंप्यूटिंग, AI डेटा, AI इनोवेशन सेंटर्स, AI फ्यूचर स्किलिंग, और इसी तरह से ग्रीन हाइड्रोजन भी लगभग उसी समय में लॉन्च हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन में हम धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं। हमने बजट में भी जो घोषणा की गई थी कि हमारे 5 स्मॉल रिएक्टर्स होंगे
0: जी,
1: तो स्मॉल और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स टिल 2033, उनमें से हमारे 3 पर काम शुरू हो चुका है, 3 में से 1 है जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। हाइड्रोजन में हमें थोड़ी सी दिक्कत यह है कि उसको स्केल अप करने में, अगर फ्रैंकली स्पीकिंग इलेक्ट्रोलाइजर्स वगैरह जो हमारे हैं उनका शायद अभी कैपेसिटी कम है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम स्केल अप करेंगे तो उसकी कीमत भी घटेगी और उसकी मात्रा भी बढ़ेगी, और ये सारा एक पूल बनेगा, हाइड्रोजन सोर्स, न्यूक्लियर सोर्स, रिन्यूएबल, और रिन्यूएबल में भी विंड सोर्स, सोलर सोर्स के हम नए नए एरियाज तलाश कर रहे हैं। जैसे हमने ओशन, क्योंकि डीप ओशन मिशन भी इसी सरकार ने शुरू किया, वहां पर एक कंपोनेंट हमने ओशन एनर्जी का रखा है, यानी समुद्र के पानी के ऊपर, समुद्र के तट के ऊपर आप अगर सोलर शीट्स बिछा दे तो आपको रिन्यूएबल एनर्जी, समुद्र में चलती हुई तेज हवाओं का आप इस्तेमाल करें तो उसमें भी एनर्जी, समुद्र में जब
2: सब्जी लेते वक्त भाव करते हो ना, और क्लोथ्स लेते वक्त बार्गेनिंग भी, फिर मेडिसिन पे सिर्फ 10% पे सेटल क्यों? नेटमेट्स पे रोज मिलता है 24% डिस्काउंट ऑन मेडिसिन, वो भी 0 प्लेटफॉर्म चार्जेस और हैंडलिंग फी के साथ। तो फिर समझदारी दिखाओ, नेटमेट्स पे आओ।
1: 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी होगी जो लगभग 10-15% पूरे हमारी जरूरत का हिस्सा बनेगी, लगभग 60-70% हमारा न्यूक्लियर एनर्जी होगा।
0: बिल्कुल सर, हमें कोई फाइनल मैसेज 12 साल और उसके बाद जो लगातार साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम हुआ है उसको लेकर दर्शकों तक?
1: मुझे लगता है कि 12 साल और इसके आगे हम कैसे जाएंगे, 2047 का हम लक्ष्य कैसे प्राप्त करेंगे, अक्सर चर्चा की जाती है लेकिन इसको साइंटिफिक ढंग से नहीं सोचा जाता
0: जी।
1: वो उन सेक्टर से जो पहले ना तलाशेंगे ना तराशेंगे, इधर अनएक्सप्लोर्ड और अंडर एक्सप्लोर्ड, जैसे हमारा ओशन है, भारत एक ऐसा देश है जिसका 11-12 हजार लंबा समुद्री तट है, 12-13 प्रदेश इसके तट पर बसते हैं, उसके अंदर संपत्ति ही संपत्ति है, माइंस, मिनरल, किसी ने नहीं देखा, अगर हम उसको तराश सके। हमारा दूसरा सरमाया हिमालयास, आज वहां से लेवेंडर निकल रहा है, पर्पल रेवोल्यूशन आया है, फ्लोरिकल्चर जो प्राण प्रतिष्ठा जब अयोध्या में हुआ तो उसमें जो ऑफरिंग की गई थी उसमें ट्यूलिप हमारे पालमपुर के इंस्टीट्यूट से आया, तो फ्लोरिकल्चर, तो ये जो सेक्टर्स थे जो पहले पूरी तरह स्पेस सेक्टर जिनको पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया था, अगर हम इनको पूरी तरह से एक्सप्लोर करने में कामयाब हो गए तो मुझे लगता है हम 2047 से पहले ही उस स्तर पर पहुंच जाएंगे कि हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ 2047 का शताब्दी वर्ष मना सकें।
0: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े इसमें और तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर की साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर। तो ये भारत के बढ़ते हुए कदम है जो लगातार और ज्यादा सशक्त होते हुए नजर आ रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर, और जो नई नई तकनीकी जो चीजें निकल कर सामने आ रही है, बात चाहे क्वांटम एनर्जी को लेकर हो, टेक्नोलॉजी को लेकर हो, इसके अलावा जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देख रहे हैं उसमें हो, तो ये सब कुछ दिखा रहा है कि किस तरह से भारत और ज्यादा प्रगति की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और यही वो तस्वीर है जो भारत को और ज्यादा सशक्त करती हुई नजर आ रही है। नमस्कार।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे गौरव श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
4: We now bring you an interview with Ashish Dhawan, founder and CEO of Convergence Foundation. The interviewer is Anil Padmanabhan, journalist.
5: On 26th May 2014, the National Democratic Alliance, led by Prime Minister Narendra Modi, took the oath of office. It marked the beginning of a new political chapter in India. What followed over the next 12 years was not just a change in government, but an attempt to reshape the Indian state, economy and society at a staggering scale. Bharat Reloaded, a special series to mark the 12th anniversary of the NDA, will look back at these momentous years through conversations with policymakers, economists, entrepreneurs and investors. It will take stock of a decade that sought to reimagine India. I am your host, Anil Padmanabhan. Much of the conversation around development focuses on policies, budgets and reforms. But the real test of governance is the ability of institutions.

0: which are easier to achieve, and you can show, and they are, it's part of the ladder of progress. So I think that's very important in order to keep the political salience high behind these issues.
1: Unfortunately, we are out of time. Thank you so much for speaking to us, Ashish.
0: My pleasure. Thank you for having me.
2: In the special series, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke, you were listening to an interview with Ashish Dhawan, founder and CEO of Convergence Foundation. The interviewer was Anil Padmanabhan, journalist. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.
3: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:45 हो रहे हैं। दोस्तों, समाचार संध्या के लिए आइए आपको दिल्ली ले जाएंगे।
4: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा मिले हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
5: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट।
4: इस संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा

0: नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास।
0: इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत, हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
3: फ्रंटियर मॉडल्स इज स्पीयरहेडिंग ग्लोबल इनोवेशन।
0: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
4: The world seeks trusted and reliable partners.
5: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
4: And a scale that few can match.
0: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
6: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए, मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए, हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं और इसके चलते जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है और वो हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूंगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत

0: उपरोक्त विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का विषय बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस जन नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
3: जीएसटी को हमारे देश में लागू इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
2: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
4: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
5: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
2: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचीरस तालुका में महासवाड़ पंडरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे, इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में तारीखी विला केरलोस में वफ्द की सतह की बातचीत की। उन्होंने मुख्तलिफ कलीदी शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान

0: The first boundary came off a delivery which was short in length. This one came off a delivery which was awry in line. Shreyanka Patil hurled it down the leg side, and all Muniba Ali had to do was bunt it into the gap between short fine leg and deep backward square leg. Next delivery, a better one, full in length, but more importantly, within the stumps, near about the middle stick, and hence Muniba can only play it back to the bowler. Better line, better length. This is what India need to do. Next delivery, Muniba Ali tries to manufacture a shot. She has miscued it. However, Arundhati Reddy has shelled a sitter. It is a sitter by the standards of international cricket. She might have been staring into the sun, but she's wearing the sunglasses. She can shake her head all she wants now. However, the truth is that catch is expected to be taken on a good length, and Muniba Ali stepped out like she had decided yesterday, tried to go inside out, ended up slicing the ball and running towards her left from backward point. Arundhati got to the ball.
1: दबाव काफी बढ़ा सकती है भारतीय टीम के लिए, काफी मुश्किलें पैदा कर सकती हैं. भारतीय टीम ने आज बल्लेबाजी अच्छी की, खासतौर से स्मृति मंदाना की बात करें या फिर हरमनप्रीत की बात करें या ऋचा घोष की बात करें, लेकिन अब भी गेंदबाजी में वो धार देखने को नहीं मिली है जिसके लिए भारतीय टीम से अपेक्षा की जा रही है.
0: इंटरेस्टिंग थिंग देयर आशीष, इवन स्मृति मंदाना वाज ड्रॉप्ड ट्वाइस, लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैटर ड्रॉप्ड ट्वाइस, द सेम हैज हैपेंड इन पाकिस्तान्स इनिंग्स एज वेल. एंड इंडिया डेस्परेटली नीड टू पुल देयर सॉक्स अप, दे डेस्परेटली नीड अ विकेट, बिकॉज इफ दिस पार्टनरशिप गोज ऑन फॉर अ वाइल, प्रेशर विल बी ऑन इंडिया. एंड इन ट्रबल, call whom? Call Deepti Sharma. Deepti Sharma has been summoned and delivers a very good delivery to start off with. Slow through the air, just 70 kilometers per hour, delivered from over the wicket, pitches round about the off stump and then spins sharply to beat Muniba Ali's tentative poke. A good start from Deepti Sharma. However, can she produce a wicket in this over and swing the momentum towards India? Muniba Ali shuffles towards the offside. Deepti Sharma goes even wider. However, Muniba Ali is able to stretch her arms out and slash this one straight to the fielder station at cover point. Two dot balls to start off with. Deepti Sharma's beginning has been solid, but can she continue bowling in tidy areas?
1: दीप्ति शर्मा से काफी उम्मीदें हैं भारत को. दाएं हाथ से ओवर द विकेट स्टंप के नजदीक से मुनीवाली के लिए, और इस बार इस गेंद को स्वीप करना चाहते थे. कामयाब जरूर रहे, लेकिन गेंद ठीक तरह से बल्ले पर आई नहीं और वहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया स्क्वायर लेग की दिशा में. 25 गज के दायरे के अंदर बिना किसी रन के स्कोर पाकिस्तान की टीम का 171 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए फिलहाल 37 रन है बिना किसी विकेट के नुकसान के, जबकि पांचवां ओवर इस समय प्रगति पर है. अगली गेंद फ्लाइटेड, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद की पिच तक पहुंचे, गेंद को उठा करके खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद ठीक तरह से बल्ले पर आई नहीं. मिड विकेट क्षेत्र में गेंद को वहां पर फील्ड किया गया. क्षेत्र रक्षक गेंद से काफी दूर था, लेकिन एक रन जरूर मिल जाएगा इससे पहले कि गेंद फील्ड होकर पहुंचे वापस दीप्ति शर्मा के पास. इस एक रन की मदद से 38 पर पाकिस्तान की टीम का स्कोर, मुनीबा पहुंची 24 पर. 30 गेंदों का सामना करने के बाद उन्होंने ये 24 रन बनाए हैं, और गुल फिरोजा इस समय 12 के व्यक्तिगत स्कोर पर अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार है. रनों की रफ्तार को थामने में जरूर कामयाबी हासिल हुई है दीप्ति शर्मा को इस ओवर के दौरान. पहली चार गेंदों में ये पहला रन था. अगली गेंद तो और रिवर्स स्वीप करने की कोशिश, गेंद हवा में, और वहां पर कोई गलती नहीं की. पहला झटका लगता हुआ गुल फिरोजा के रूप में पाकिस्तान को यह झटका लगा है, और दीप्ति शर्मा ने अपने पहले ही ओवर के दौरान यह सफलता भारत को दिलवा दी है. जिस उम्मीद के साथ हरमनप्रीत कौर ने उन्हें गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया था, निराश नहीं किया,

0: और जैसे ही इस बार रिवर्स स्वीप करने की कोशिश की, वहां पर कोई गलती नहीं हुई और बहुत आसानी के साथ कैच कर लिए गए इस अवसर पर पाकिस्तान के गुल फिरोजा.
1: Catch taken at backward point by Bharti Pulmali. Now, interesting thing was that Deepti Sharma pushed backward square leg to the boundary. She also pushed mid-wicket to the boundary. Remember, you are only allowed two fielders outside the 25-yard circle in the power play. So, both those fielders were on the leg side and Deepti went around the wicket for this delivery, which means she wanted to give away a single by delivering it on the pad line. Gulfiroza was very well aware of it and therefore she tried to manoeuvre a shot by flipping in her stance and going over backward point. However, she wasn't able to find the desired elevation and Bharti Pulmali did the rest. And now in box Aisha Zafar, who last month against Zimbabwe, which is not considered the strongest team in the world, but against that side, she scored a century. Remember what I told you? In women's T20 internationals, only three centuries have been scored by Pakistani batters. Two by Muniba Ali, one by Aisha Zafar. Both of them out in the middle. Last delivery of the fifth over is coming up. Deepti Sharma currently in play. She is delivering the last delivery of her first over. Delivers this one on the pad line. And there comes the sweep shot. Well placed by Aisha Zafar. She beats the diving shot fine leg fielder to her left. However, the deep backward square leg fielder will be able to run around and cover up for the mistake done inside the inner ring. Hence, only a single end of the fifth. 39 for one.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
2: तुम हो ही भुलक्कड़.
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली.
4: जानिए आभा के बारे में.
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
0: तो दीप्ति शर्मा का कामयाब ओवर समाप्त होता हुआ भारत के लिए पहली सफलता उनके नाम के आगे दर्ज हो चुकी है और अब तक 162 विकेटें उन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में हासिल की है, जो कि इस विश्व कप में खेलने वाले तमाम गेंदबाजों में से सबसे ज्यादा है. क्या शानदार प्रदर्शन रहा है दीप्ति शर्मा का. न केवल गेंदबाजी से बल्कि बल्लेबाजी में भी उन्होंने समय समय पर जौहर दिखाए हैं. और श्रियंका पाटिल के स्थान पर, जिन्होंने दो ओवर की गेंदबाजी की है लगातार, उनके स्थान पर अब अरुंधति रेड्डी गेंदबाजी के मोर्चे पर नजर आ रही हैं 39 एक विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद.
1: A slight delay because there's some problem with the zinc bail, which is now being replaced. Looks like the replacement has been done and now we are set to go. Arundhati Reddy to bowl what will be her second over.
0: पहले ओवर में 8 रन उन्होंने दिए थे. देखना है कि अपने इस दूसरे स्पेल के पहले ओवर में क्या कुछ कर पाती हैं. पहली गेंद ओवर द विकेट, लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ ऑन फील्ड अंपायर जैकलिन विलियम्स के द्वारा. एक रन उपहार के रूप में मिलता हुआ पाकिस्तान की टीम को और इस एक रन की मदद से पाकिस्तान की टीम का स्कोर 40 एक विकेट के नुकसान पर 171 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम एज वेस्टर्न पर इस समय भारतीय गेंदबाजी का मुकाबला कर रही है. अगली गेंद बैकफुट पर जाकर हल्के से पुश किया लेकिन एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में गेंद 25 गज के दायरे के अंदर फील्ड कर ली गई और रन बनाने की तमाम संभावनाओं को वहां पर समाप्त कर दिया गया.
1: एंड देयर कम्स अ फ्लैट थ्रो टू द कीपर who fails to gather it once again. However, the overthrow doesn't cost India anything, but Richa Ghosh needs to tighten up.
0: जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने. कहीं ना कहीं न केवल एक कैच उन्होंने छोड़ा है बल्कि जो स्टंप के पीछे गैदरिंग है उनकी वो आज उतनी साफ नहीं है. अगली गेंद इसे बेच और उठा करके खेल दिया मिड विकेट क्षेत्र में. इस बार जफर ने गेंद सीमा रेखा से बाहर 5 रनों के लिए, 4 रनों के लिए माफ
5: कीजिएगा. ये लगा आभा का चौका.
0: 5 के व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंची हैं आयशा जफर इस चौके की मदद से. और आयशा जफर, जिसके बारे में अभी दर्पण बता रहे थे कि जिम्बाब्वे के खिलाफ जो घरेलू T20 मुकाबले हुए थे उसमें उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था और 102 रन बनाए थे पहले ही मैच में और उसमें आउट भी नहीं हुई थी. 47 गेंदों में वो 102 रनों की पारी उन्होंने खेली थी. अगली गेंद बैकफुट पे जाकर खूबसूरती के साथ कट कर दिया और गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई एक बार फिर से 4 रनों के लिए.
5: ये लगा आभा का चौका.
0: पहले ओवर में 8 रन दिए थे अरुंधति रेड्डी ने और इस ओवर में लगातार यहां पर रन लुटाती हुई नजर आ रही हैं। पहली गेंद वाइड थी, उसके बाद लगातार दो चौके और कहीं ना कहीं उन्हें अपनी लाइन और लेंथ पर जरूर सोचना होगा। बहुत ज्यादा रूम ना दें वो बल्लेबाजों को स्ट्रोक खेलने के लिए, कुछ ऐसा उनको करना होगा। एक बार फिर से तैयार, इस बार इस गेम को बैकफुट पे जाकर हल्के से पुश किया, दाईं तरफ जाकर गेंद को फील्ड करने की कोशिश जरूर की थी अरुंधति ने वहां पर, लेकिन अपने इरादे में कामयाब नहीं रही और इससे पहले कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जा सके, बहुत तेजी के साथ दौड़कर एक रन और जुटा दिया पाकिस्तान की आयशा जफर ने। आयशा जफर इस एक रन की मदद से दोहरे अंक में 10 के व्यक्तिगत स्कोर पर 5 गेंदों का सामना करने के बाद मुनीबा अली 24 के व्यक्तिगत स्कोर पर अगली गेंद का सामना करेंगी। आज काफी बढ़िया और आक्रामक बल्लेबाजी का प्रदर्शन उन्होंने अब तक किया है एग्बेस्टन के इस खूबसूरत मैदान पर। 20 गेंदों में 24 रन अब तक वो बना चुकी हैं। 2 गेंदों का आना बाकी है इस ओवर में जो कि पावर प्ले का अंतिम ओवर है। अरुंधति रेड्डी की यह गेंद और इस बार खूबसूरती के साथ इस गेंद को ड्राइव किया एक बार फिर से, लेकिन डीप कवर में फील्डर मौजूद है राधा वहां पर जो कि सब्स्टिट्यूट फील्डर के रूप में इस समय बीच मैदान पर हैं। गेंद को उन्होंने फील्ड किया लेकिन तब तक एक रन का इजाफा और इसके साथ ही पाकिस्तान की टीम की पारी का स्कोर ठीक 50 रन एक विकेट के नुकसान पर 5.5 ओवर की समाप्ति के बाद। भारत ने एक विशाल चुनौती जरूर दी है लेकिन भारतीय गेंदबाजों को यहां पर थोड़ी कसावट भरी गेंदबाजी करनी होगी, अन्यथा परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल भी सकती हैं T20 मुकाबले में। अगली गेंद और इस बार इस गेंद को फिर से खेल दिया है फाइन लेग की दिशा में, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, थोड़ा सा छिटकी गेंद बैकअप कर रही थी फील्डर वहां पर, गेंद को उन्होंने फील्ड किया लेकिन तब तक आसानी के साथ 2 रन और बटोर लिए। तो 2 चौके, 2 सिंगल्स, 10 और अंतिम गेंद पर 12 और 1 वाइड, 13 रन इस ओवर में आते हुए दर्पण, और पहले ओवर में 8 और इस ओवर में 13। तो कहीं ना कहीं अरुंधति रेड्डी अपनी गेंदबाजी से आज बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर पाए।
1: Well, tough day at the office so far, but she can turn it around. There is a long, long time to go in this match. It's time for a drinks break. 6 overs done, 52 for 1 Pakistan. And the highlight from India's perspective has been the ordinary display of fielding. 2 drop catches, 1 put down by Richa Ghosh, 1 put down by Arundhati Reddy. Even on the last delivery, as Ashish told you, there was a little bit of a misfield at short fine leg. Deepti Sharma was the culprit. The good thing is Radha Yadav is on the field. I don't know who she is substituting. However, the reason why I say that it is a good thing is because Radha Yadav is one of the better fielders in this Indian team. And she would be put in the hot spots. Her and Jemima Rodrigues will have to do the heavy lifting because these two are India's finest fielders. However, the others will also have to pull their socks up. Deepti Sharma's fifth over, or her first over, which was the fifth of the innings, produced the solitary wicket for India so far. That wicket was of Gulfiroza, and with that Deepti Sharma has now picked up 162 wickets. As Ashish told you, it is the highest amongst all the players who are playing this World Cup. In terms of the overall list, she's only behind Thailand's Tipacha Puttuwang, who has got 165 wickets to her name. So Deepti, if she picks up 3 more wickets, she will be at level and will be at the apex of that list. The target is 171 for Pakistan. India scored 170 for 6, riding on hefty contributions from Smriti Mandhana, Harmanpreet Kaur and Richa Ghosh. Now remember, this is the highest ever they have scored against Pakistan in women's T20 eyes. However, Pakistan have responded well. They have picked up a good power play score, and as we told you before the start of this innings, this change in approach that we are seeing in this Pakistan team has been brought about with the change of regime. A few months ago, Wahab Riaz took over. He was very, very adamant in saying that we need to galvanize the way we bat in T20I cricket. He summoned some youngsters into the team, and since then we have seen this approach. Currently, Muniba Ali batting on 25 and Aisha Zafar batting on 12. The only two Pakistani batters who have scored centuries in women T20Is are in the middle, and the drinks break has now come to a conclusion. Deepthi Sharma once again has the ball in her hand, the only successful bowler for India so far. She begins the seventh over, delivers this one from over the wicket on a drivable length, and in a very measured manner, Muniba Ali gets onto the front foot, square drives it towards the fielder at deep cover, who runs to her right and then cleans it up. In the drinks break, we saw animated conversation from India's bowling coach Avishkar Salvi, who was on the park having a conversation in the team huddle, and we hope that the words of wisdom that he gave would work, and we will see its effects soon. Deepthi Sharma meanwhile delivers this one from around the wicket to the right hander, and Aisha Zafar nudges the ball back to the bowler. 53 for 1 after 6.2.
0: 53 ek wicket ke nuksan par ek baar phir se around the wicket wahan par Deepthi Sharma aur gend ko sweep karna chahte the, lekin wahan par fine leg par fielder maujood, koi kotahi nahi, bahut hi safai ke sath us catch ko mukammal kar liya, aur yahan par Pakistan ko ek aur jhatka lagta hua. Aisha Zafar, jinse kafi umeedein Pakistan ki team ko nishchit roop se rahi hogi, Zimbabwe ke khilaf gharelu shrankhla mein unhone shandar pradarshan kiya tha, shatak lagaya tha, lekin yahan par Deepthi शर्मा ने उन्हें वापस पवेलियन चलता कर दिया है मात्र 12 के व्यक्तिगत स्कोर पर. इस गेंद को जैसे ही उन्होंने अपना मौका ताड़ने की कोशिश की, स्वीप किया था, लेकिन फाइन लेग जो कि 25 गज के दायरे के अंदर वहां पर मौजूद था, कोई गलती वहां पर नहीं हुई और इस तरह से उस कैच को मुकम्मल कर लिया गया. तो एक और झटका पाकिस्तान की टीम के लिए. स्मृति मांधना ने बहुत ही खूबसूरती के साथ आगे की तरफ डाइव लगाते हुए उस गेंद को अपने हाथों में कैद किया और ये कामयाबी भारत की झोली में डाल दी.
1: विकेट वंस अगेन फॉर Deepthi Sharma. शी डिलीवर्स एवरी टाइम इंडिया नीड्स हर टू. व्हेन शी वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द अटैक, व्हाट डिड वी से, इन ट्रबल कॉल Deepthi. And she has delivered with not just one, but two wickets now. Two wickets in her 1.3 overs, 2 for 3. And in walks youngster Saira Jabeen now. Saira Jabeen and Muniba Ali in the middle. Pakistan still needing 117 in 80 balls here at Edgbaston, which has been an iconic ground and has witnessed many iconic moments in cricket. Is witnessing another iconic match because both the teams are tussling it out there. Deepthi Sharma still around the wicket, delivers this one on a good length. Slow through the air, just 70 kilometers per hour, and that allows the batter to get onto the front foot and then nudge it towards backward square leg and pick up a comfortable single. In case you've just joined us, Pakistan have just lost their second wicket. Smriti Mandhana with an excellent catch at short fine leg, for which she had to fling herself forward and grab it inches from the ground, produced that wicket off the bowling of Deepthi Sharma. Meanwhile, the next delivery, Deepthi beats the bat. Good length, pitches outside off and then spins further away. Muniba Ali flayed her hands away from the body. The ball whizzed past the outside edge and Richa Ghosh once again fumbled in collection. Final ball of the over on a drivable length. In a measured manner, Muniba knocks it towards deep extra cover, where Jemima Rodrigues mops up a comfortable single added. Pakistan moved to 55 for 2 at the end of the 7th.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
2: तुम हो ही भुलक्कड़.
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली.
4: जानिए आभा के बारे में.
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
0: अपना पांचवा टी20 विश्व कप खेल रही दीप्ति शर्मा ने दो सफलताएं अब तक अपने पहले दो ओवर के स्पेल में हासिल कर ली हैं और भारत की अब तक एकमात्र सफल गेंदबाज हैं। और उनका गेंदबाजी का विश्लेषण यदि आप देखें दर्पण, तो दो ओवर में कोई मेडल नहीं, 5 रन उन्होंने दिए और दो सफलताएं, ना केवल सफल बल्कि साथ ही साथ किफायती भी, और जिसकी दरकार है भारत को गेंदबाजी में परिवर्तन। श्री चरनी इस समय अरुंधति रेड्डी के स्थान पर आती हुई पहली गेंद और इस गेंद को स्वीप करने के अंदाज में खेला, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है, गेंद को फील्ड

0: दिया जाएगा जेमिमा रॉड्रिक्स के द्वारा, लेकिन तब तक एक रन के लिए छोर बदल लिया था दोनों बल्लेबाजों ने। इस एक रन की मदद से मुनीबा का स्कोर हुआ 28 25 गेंदों का सामना करने के बाद। और अब वहां पर श्री चन्नी की यदि बात करें तो 21 मैचों में अब तक 28 विकेट उन्होंने हासिल की है। शानदार प्रदर्शन रहा है चन्नी का पिछले कुछ समय में। बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाज हैं और अराउंड द विकेट आते हुए इस अवसर पर एक रन के लिए खेल दिया था उस गेंद को मिड विकेट क्षेत्र में। इस एक रन की मदद से सायरा का स्कोर पहुंचा 2 पर और पाकिस्तान की टीम का स्कोर हुआ 57 2 विकेट के नुकसान पर। 8वां ओवर इस समय प्रगति पर है। गेंद की रफ्तार यदि आप देखें तो चाहे श्री चन्नी की बात करें या फिर दीप्ति शर्मा की, बहुत ज्यादा गति नहीं दे रही है अपनी गेंदों को। अगली गेंद और इस बार इस गेंद को ड्राइव किया वहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा में। एक रन का और इजाफा होता हुआ मुनीबा अली के खाते में। इस एक रन की मदद से मुनीबा पहुंची हैं अब 29 के व्यक्तिगत स्कोर पर और पाकिस्तान की टीम 171 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए फिलहाल पहुंच गया है 58 2 विकेट के नुकसान पर। दोनों सफलताएं दीप्ति शर्मा के खाते में। श्री चन्नी की अगली गेंद और लीडिंग गेंद और इसके साथ ही एक और सफलता वहां पर भारत को। श्री चन्नी जो कि बहुत बढ़िया प्रदर्शन करती हुई हाल फिलहाल में नजर आ रही हैं, एक बार फिर से उन्होंने अपनी गेंदबाजी का जलवा बिखेरा है एजबेस्टन के इस खूबसूरत मैदान पर। और सायरा जबीन ने जबकि इस गेंद को खेलने की वहां पर कोशिश की थी अक्रॉस द लाइन, बल्ले का मुंह बहुत जल्दी बंद हो गया था, गेंद बल्ले के बाहरी किनारे पर लगती हुई लीडिंग एज लेती हुई हवा में उछली और 25 गज के दायरे के अंदर वहां पर उस गेंद को लपकने में किसी तरीके की कोई कोताही नहीं बरती कप्तान हरमनप्रीत ने। तो इस तरह से पाकिस्तान को तीसरा झटका लग चुका है। एक बार फिर से भारतीय टीम इस समय बहुत तेजी के साथ इस मुकाबले में वापसी करती हुई, हालांकि एक समय जिस तरह से उनके प्रारंभिक बल्लेबाजों ने शुरुआत की थी लग रहा था कि कहीं ना कहीं भारत के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं, लेकिन 38 के कुल स्कोर पर भारत को पहली सफलता दीप्ति शर्मा ने दिलाई और अगले ही ओवर में एक और कामयाबी उन्होंने दिलाई दी थी आयशा जफर का विकेट लेकर। और मजे की बात है गुल फिरोजा और आयशा जफर दोनों ही 12-12 के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट हुए थे।
1: राइट, सो थर्ड विकेट डाउन नाउ। नतालिया परवेज मेक्स हर वे टू द मिडल एंड श्री चन्नी प्रोड्यूसिंग द गुड्स फॉर इंडिया। लेफ्ट आर्म स्पिनर, द preferred left arm spinner should I say, why did I say that, we'll tell you after this ball. Around the wicket she comes in to deliver what will be the fifth ball of the eighth over. This one an attempted slog sweep from Natalia Parvez which lands in the vacant region at mid on before Kranti Gaur can run in from long on, pick the ball up and hurl it back towards the 22 yard strip. A comfortable single will be taken, so not a very convincing shot, but it allows Natalia Parvez to get off the mark. Remember, Radha Yadav is a part of the squad and she is an all-rounder, she can bat a bit too. However, Team India prefers Shri Charani over her, even though she's a bit of a liability in the field or has not really been that good in the field of late. She has also she doesn't have that kind of batting credentials either, yet she brings so much with the ball in her hand that India prefer her. The next delivery, which was the final one of the eighth over, was delivered on a drivable length. Muniba Ali inside edged it onto her pads. End of the eighth, 59 for 3 are Pakistan and they are in pursuit of 171. Still need 113 more in the remaining 72 balls. So Shri Charani and Deepti Sharma, the successful bowlers for India. Deepti Sharma will continue and she will deliver her third over. Big appeal for LBW and shakes her head. Does umpire Claire Polosak. This one was delivered from around the wicket. Pretty much in line with the stumps. At least it looked so to my untrained eye. Attempted a sweep there. Did the batter and did not connect. And interestingly, India have challenged the decision. They have opted for the use of DRS and Claire Polosak makes the signal over to TV umpire.
0: तो भारत के लिए यहां पर एक और अवसर है, हालांकि अपील बहुत विश्वास के साथ की थी वहां पर दीप्ति शर्मा ने, अंपायर क्लेयर पोलिसेक ने उसे नकार जरूर दिया था, लेकिन एक लंबी मंत्रणा वहां पर दीप्ति शर्मा, विकेट कीपर ऋचा घोष और कप्तान हरमनप्रीत के बीच में हुई थी, और उसके बाद हरमनप्रीत ने फैसला लिया कि वो डीआरएस के लिए जाएंगे। तो देखना यह है कि टीवी अंपायर का वहां पर क्या निर्णय आता है। निश्चित रूप से भारतीय टीम को काफी उम्मीदें हैं, जिस तरह से आत्मविश्वास से लबरेज दीप्ति शर्मा अपनी इस अपील पर नजर आ रही थी, और मुनीबा अली 29 रन बनाकर खेल रही हैं, नतालिया परवेज 1 रन बनाकर खेल रही हैं। इस समय प्रश्न चिन्ह उन्हें लेकर के है कि नतालिया परवेज क्या मैदान पर रहेंगी, बल्लेबाजी को जारी रखेंगी या फिर पवेलियन की तरफ वापसी करनी होगी।
1: The thing to be seen here is whether the ball pitched in line with the stumps or not. Because remember, Deepti Sharma went around the wicket to the right-handed batter. She often gets a lot of drift. Did the ball drift enough to pitch in line with the stumps is the question. Before that, of course, TV umpire Kim Cotton will go through the procedures. First of all, she will check if there is any bat involved or not. And Ultra Edge tells us, according to the graph that is up on our monitors, it tells us that there is no bat or no glove involved. Ball tracker coming up next. Yes, it has drifted in enough to pitch in line with the stumps. However, it is spinning or rather drifting a little bit too much, suggests ball tracker. It would have only clipped the off stump. Hence, it's two reds. Pitching in line, impact in line, but wickets hitting is umpire's call. Two reds and an amber. India will keep the review. However, Natalia Parvez survives.
0: So, Natalia Parvez abhi bhi beech maidan par ek ke vyaktigat score ke saath tappa khane ke baad gend drift hokar bahar ki taraf nikal rahi thi, aur umpire's call thi wo wahan par, जिसका लाभ नतालिया को मिला था वहां पर। इसी बीच रनआउट की एक और अपील अगली गेंद पर आगे की तरफ निकली थी बहुत तेजी के साथ, दीप्ति ने वहां पर थ्रो किया था ऋचा घोष की तरफ और स्टंप के ऊपर से उन्होंने गिल्लियां बिखेर दी थी। देखना है कि क्या इस अवसर पर ये टीवी अंपायर का जो रिव्यू है वो भारत के पक्ष में जाता है या नहीं, लेकिन जो हमें स्क्रीन पर देखने से लग रहा है दर्पण, उससे तो ये लगता है कि बल्ला टिकाने में कामयाब हुई थी नतालिया परवेज अपनी क्रीज के अंदर। तो 8.2 ओवर की समाप्ति के बाद 59 विकेट के नुकसान पर 171 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम का स्कोर है फिलहाल एजबेस्टन पर आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के 10वें संस्करण के इन दोनों ही टीमों के पहले मुकाबले के बीच में। नतालिया एक बार फिर से स्ट्राइक पर स्टांस लेने के साथ तैयार, और अराउंड द विकेट आते हुए दीप्ति शर्मा, और इस बार मिडल और लेग स्टंप की इस गेंद को कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए मोड़ दिया था बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे जाकर फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, लेकिन तब तक आसानी के साथ एक रन जुटाने में कामयाब रही नतालिया परवेज, और इस एक रन की मदद से पाकिस्तान की टीम का स्कोर अब 63 विकेट के नुकसान पर। मुनीबा अली ने अब तक बढ़िया बल्लेबाजी की है 29 के व्यक्तिगत स्कोर पर। ओवर द विकेट मुनीबा के लिए, बाएं हाथ के बल्लेबाज मुनीबा ने इस बार ये गेंद जो कि ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर थी अपनी जगह खड़े होकर बल्ले को बिल्कुल आड़ा करते हुए किसी तरीके से इस गेंद को धकेलने में कामयाबी हासिल की। कवर क्षेत्र की तरफ आसानी के साथ एक रन और जुटा लेंगे। इस एक रन की मदद से पाकिस्तान की टीम का स्कोर 61 विकेट के नुकसान पर। दीप्ति शर्मा ने काफी कसावट भरी गेंदबाजी की है और दो सफलताएं अब तक भारत के खाते में डाल चुकी हैं। अराउंड द विकेट और इस बार इस गेंद को सेव करने के अंदाज में खेला, लेकिन प्रोटेक्शन है वहां पर, डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद हैं, गेंद को उन्होंने फील्ड किया, लेकिन एक रन का इजाफा और हो जाएगा इस पांचवीं गेंद पर, और 62 स्कोर हुआ पाकिस्तान की टीम का 3 विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंद का आना बाकी है। पिछली 3 गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करने में मुनीबा अली और नतालिया परवेज कामयाब हुए हैं दीप्ति शर्मा के सामने। अंतिम गेंद पर मुनीबा क्या बड़ा स्ट्रोक लगाएंगी। ओवर द विकेट मुनीबा के लिए, और फ्रंट फुट पे आकर हल्के से गेंद को पुश किया, एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में 25 गज के दायरे के अंदर गेंद को फील्ड कर लिया गया और रन की तमाम संभावनाएं समाप्त कर दी गई। अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं। 9 ओवर के बाद पाकिस्तान 62-3 विकेट के नुकसान पर।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: जानिए आभा के बारे में।
2: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं।

0: वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय स्तंभ शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है। विदेश मंत्रालय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। 2 दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि ये वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ये हादसा मालशेरस तालुका में मेहासवाड़ पंढरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट NEET.NTA.NIC.IN से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे होनी है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिसमें सभी को बचा लिया गया है। बर्मिंगम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मांदना ने 68 रन की पारी खेली। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 13वें ओवर में 6 विकेट पर 80 रन बना लिए हैं। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में आज बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं अरुण कुमार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर हुई खासतौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और तीरंदाजी में भारत ने तुर्की में विश्व कप के तीसरे चरण में 2 स्वर्ण पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति और भविष्य को आकार दे रही हैं।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
3: फ्रंटियर मॉडल्स इज स्पीयरहेडिंग ग्लोबल इनोवेशन।
0: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
4: The world seeks trusted and reliable partners.
5: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
4: And a scale that few can match.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रेनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: विदेश मंत्रालय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। इस दौरान पश्चिमी यूरोप मामले के अपर सचिव पीयूष श्रीवास्तव, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल और फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला उपस्थित थे। सम्मेलन में द्विपक्षीय वार्ताओं के प्रमुख परिणामों का जिक्र किया गया। इनमें भारत इनोवेट्स का संयुक्त उद्घाटन और नवाचार, प्रौद्योगिकी, व्यापार, निवेश तथा रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई चर्चाएं शामिल हैं। सम्मेलन में बताया गया कि दोनों नेताओं ने भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सार्वजनिक विचार विमर्शों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बढ़ता महत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ओशन मिशन और गगनयान जैसे कार्यक्रमों ने विज्ञान और नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में स्थापित करने में मदद की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का विषय बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 पर सवार सभी 14 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया है। इंजन खराब होने के कारण ये नौका ओमान के तट के पास डूब गई थी। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं। भारतीय नौसैनिक पोत शारदा ने श्रीलंका के कोलंबो की यात्रा पूरी कर ली है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग और आपसी संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। यात्रा के दौरान श्रीलंका की नौसेना के साथ कई पेशेवर प्रशिक्षण और खेल संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसराइल ने लेबनान की राजधानी पर ईरान के समर्थन वाले हथियारबंद समूह हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर हमला किया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि ये हमले उत्तरी इसराइल में हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में किए गए थे। तुर्की के अंताल्या में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत के धीरज बोमा देवरा और किशोरी कुमकुम मोहद ने रिकर्व मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की ओह ये जिन और किम जे ड्योक को हराया। फाइनल में धीरज ने ली वुक सियोक को हराकर अपना पहला व्यक्तिगत तीरंदाजी स्वर्ण पदक भी अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलॉस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर हुई खासतौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। ओमान के तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और तीरंदाजी में भारत ने तुर्की में विश्व कप के तीसरे चरण में 2 स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों सोचिए जरा, आकाश में चांद अगर ठहर जाए, हवा अगर कुछ मध्यम मध्यम आपके कान में कहने लगे और दिल पुराने दिनों की सीढ़ियों पर धीरे धीरे उतरने लगे, तब समझ लीजिए कि मोहब्बत अपनी दस्तक दे रही है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हर सिंगार और शमीम खान है अभी आपके साथ। आज आपको लेकर चलूंगा उन एहसासों के पास जहां प्रेम शब्दों से नहीं खामोशियों से बोला जाता था, जहां एक झलक पूरी शाम को रोशन कर देती थी और एक प्रतीक्षा उम्र भर की कहानी बन जाती थी। तो आइए इस मधुर सफर का आरंभ करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

प्रेम शायद दुनिया का सबसे शांत और गहरा एहसास है। ये कभी तेज आवाज में नहीं आता, ये तो अक्सर किसी शाम की खामोशी में, किसी अधूरी चिट्ठी में या किसी पुराने रास्ते पर अचानक लौट आई याद में छुपा मिलता है। अच्छा, आपने गौर किया है कि मोहब्बत में अक्सर शब्द कम पड़ जाते हैं और आंखें बातें करने लगती हैं। कितनी सुंदर बात है कि समय बदलता रहता है, मौसम बदलते रहते हैं, मगर किसी का इंतजार अगर सच्चा हो तो बरसों बाद भी वैसा का वैसा ही रहता है। आइए इसी एहसास को आगे बढ़ाते हैं इस खूबसूरत से गीत।

0: दोस्तों कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 MHz पर। हाजिर होता हूँ एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहाँ मुफ्त इलाज एक सपना है, पर हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
5: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
6: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
0: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 MHz पर। कार्यक्रम चल रहा है हर सिंगार, और अभी आपके साथ है आपका दोस्त शमीम खान। दोस्तों कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका नाम नहीं होता, बस एक अपनापन होता है, एक सुकून होता है, जैसे किसी बरामदे में रखी पुरानी कुर्सी जिस पर बैठते ही यादें पास आ जाती हैं। पुराने दिनों का फ्रेम भी कुछ ऐसा ही था, धीमी चाल से चलने वाला, सब्र से भरा, जिसमें मिलने की खुशी ज्यादा और प्रतीक्षा का सौंदर्य था। एक मुस्कान कई दिनों तक याद रह जाती थी, एक मुलाकात महीनों तक मन में महकती रहती थी, और अब उसी महक को महसूस करने का समय है। और प्रस्तुत है मधुर स्मृतियों से भरा एक

दोस्तों कहा जाता है कि अगर प्रेम सच्चा हो तो वो कभी समाप्त नहीं होता, बस अपना रूप बदल लेता है। कभी दुआ बन जाता है तो कभी इंतजार, कभी किसी पुरानी डायरी के पन्नों में मुस्कुराता हुआ मिल जाता है। कुछ लोग उम्र भर आपके भीतर उजाला करते रहते हैं, और सच पूछिए तो मोहब्बत शायद वही है जिसमें पाने से अधिक महसूस करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो आइए दिल की खिड़कियां फिर से खोलते हैं इस सुमधुर गीत के साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य

0: जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि ये वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ऑपरेशन ओशन मिशन और गगनयान जैसे कार्यक्रमों ने विज्ञान और नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में स्थापित करने में मदद की है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ये हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड़ पंडरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 इंजन खराब होने के कारण डूब गई। इस पर सवार सभी 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। इसराइल ने लेबनान की राजधानी पर ईरान समर्थित समूह हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर हमला किया। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि ये हमले उत्तरी इसराइल में हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में किए गए थे। बीते दिनों इसराइल ने बेरूत के इलाकों पर हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान ने भी इसराइल पर हमले किए। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में आज बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi concluded his visit to Nice, France today after holding extensive discussions with French President Emmanuel Macron and participating in a series of engagements aimed at deepening the India-France Special Global Strategic Partnership. More from our correspondent.
3: The visit witnessed several important outcomes across technology, innovation, and economic cooperation. The most significant was the adoption of the India-France Innovation Roadmap 2030, providing a framework for collaboration in artificial intelligence, startups, research, skilling, and innovation ecosystems. Prime Minister Modi and President Macron also jointly inaugurated Bharat Innovates, bringing together more than 120 Indian startups, leading academic institutions, investors and technology leaders. The two countries announced the creation of a joint India-France AI Working Group on AI Governance, launched an economic security dialogue focusing on critical technologies and resilient supply chains, and agreed to establish a high-level annual mechanism to pursue the goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. Another key outcome was the establishment of a National Center of Excellence for Skilling in Aeronautics and Allied Sectors at NSTI Kanpur, aimed at strengthening workforce readiness in aviation and aerospace. Beyond innovation and technology, the leaders reviewed cooperation